91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और ये समय रहता है श्रोताओं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हाजिर हुई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। आज का ये अंक आपके साथ निभाऊंगी मैं यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सभी श्रोताओं को सबसे पहले सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं। और सुबह के इस समय में भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि हर किसी को अपने काम निपटाने की पड़ी होती है, कहीं ना कहीं जाने की भी जल्दी होती है। तो ऐसे में श्रोताओं काम भी कीजिए और अपने जहाँ भी आपने जाना है वहाँ जाइए, सुरक्षित जाइए, लेकिन साथ में रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी बने रहिए क्योंकि यही एक साधन है जो आपको अकेले में भी अकेला फील नहीं करवाता है। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही प्यारी इन लाइनों के साथ। तो लीजिए ये लाइनें आप भी सुनिए। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है ज़िंदगी कल आज और कल के लिए। बिल्कुल श्रोताओं ये लाइनें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं, लेकिन हमें हमारे पास समय नहीं है समझने का, ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, भाग दौड़ में भागे रहते हैं, बस एक रूटीन जो बनी है वो बनी हुई है। खैर ज़िंदगी में चलना ज़रूरी है और एक जगह अगर खड़े रह गए तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को भी हम आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का आज का पहला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का आगाज़ हमने कर दिया इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे आपने सुना अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में। श्रोताओं, सुबह का ये समय है और ये समय जो है ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता नहीं है। सुबह हम लोग सो कर जब उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं और दिन के काम के लिए हमारी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो पिछले दिन हमारे साथ हुआ हो, अच्छा बुरा, वो थोड़ा सा फीका हो जाता है या फिर भूलने लायक हो जाता है। हम दोबारा से रेडी होते हैं अपने काम के लिए, अपने उस काम के लिए जो पिछले दिन हम नहीं कर पाए। श्रोताओं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें आज का दिन देखने को मिला है, क्योंकि कौन सा पल कब हमें ना मिले इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जब भी कोई नया दिन, नया पल, नया महीना हमें मिलता है तो हमें ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। साथ ही 88.4 MHz पर हमीरपुर के जटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे कार्यक्रम का दस्तूर रहता है आपको मौसम की जानकारी देने का, तो उस दस्तूर को निभाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो मौसम का आंखों देखा हाल या जो हमें फील हो रहा है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज सुबह बहुत तेज़ धूप खिली हुई है और गर्मी का एहसास जो है वो शुरू हो गया है, और ये धूप आगे भी तेज़ बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। तो श्रोताओं, धर्मशाला की अगर हम बात करें तो आज का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी जो है 38% है। तो श्रोताओं, मौसम की बात जब भी हम करते हैं हम यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, लेकिन गर्मियों में सच में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दियों में तो खैर हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन गर्मी से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं छाया की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम घर में हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, हम अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, पंखे के नीचे हैं, और अगर कहीं गलती से बिजली चली जाए तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है। साथ ही श्रोताओं, हम लोग हमेशा घर में रहें ऐसा संभव नहीं है, अपने काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, और उस समय हमें दिखते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि कहीं ना कहीं छाया के लिए हम लोग ढूंढते हैं कहीं एक पेड़ की ओट मिल जाए और थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ ठंडी हवा का आनंद ले सकें। लेकिन ये पेड़ पौधे तब तक ही हमारे साथ हैं जब तक हम इनके साथ हैं, यानी कि हम उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं या उनकी संभाल कर रहे हैं या पेड़ों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की संख्या बढ़ रही है, बिल्डिंगों की संख्या बढ़ रही है और पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, तो सोचने वाली बात है श्रोताओं। तो मौसम की इस जानकारी के बाद आपको सोचने के लिए छोड़े जा रहे हैं, इसी बात को सोचिए ज़रा कि क्या होगा अगर ये पेड़ पौधे इसी तरह से कम होते रहे तो। आप सोचिए और साथ ही एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, लीजिए आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आपको बता दें श्रोता हूँ, अभी आपने सुना ज्योतिका टांगरी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। श्रोताओं, कुछ ही देर में यानी कि 9:20 पर समय होगा समाचारों का, तो समाचारों से पहले चलते हैं सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85% रहा मतदान। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा, 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख, कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 77% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरव ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरेन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थार्स धर्मा व परलोक पंचायतों का बीडीसी सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में अब प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिनमें 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में मां ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। उन्होंने राज्य सरकार, पर्यटन मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों से आह्वान किया है कि वे इस पवित्र स्थलों की पवित्रता और धार्मिक सार को बनाए हुए तीर्थयात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट की बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि केवल 4-5 दिनों के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना राज्य सरकार की गलत कार्यशैली और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पिछले एक वर्ष से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले इनकी मुख्य सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति करना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पद पर अल्पकालीन नियुक्ति अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव डालेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रतिदिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है। पर्यटक जहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। पर्यटक कुल्लू में जहां रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन व अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थित झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इनकी भारी भीड़ देखी जा सकती है। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा मनाली के होटलों की ऑक्यूपेंसी लगभग 90% तक पहुंच चुकी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान भेजे गए हैं तथा पंचायत चुनाव समाप्त होते ही और भी जवानों की तैनाती की जाएगी। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: HPCL स्टेडियम धर्मशाला में बीती रात हुए IPL क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने पहले चरण में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में लू के बीच रिकॉर्ड 78.83% मतदान, 1293 पंचायतों में चुनी गांव की सरकार। दैनिक जागरण के शब्द है, ग्रामीण संसद के लिए जमकर पड़े वोट। हिमाचल दस्तक लिखता है, कुल्लू में सबसे अधिक 84 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 69% मतदान। पंजाब केसरी ने खबर दी है, शिपकीला दर्रे से 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा व्यापार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिटायरमेंट से सिर्फ 5 दिन पहले IAS संजय गुप्ता बने CS, अभी था CS का अतिरिक्त कार्यभार। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लिया IPH मुकाबले का आनंद। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भीषण गर्मी, 6 जिलों में लू, 28 मई से राहत के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85 रहा मतदान प्रतिशत। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा, 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख, कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रोता हम फिर से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के साथ और आपके साथ करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, आप सभी जुड़ चुके हैं अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, और आज कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके साथ होंगी श्रोताओं, और आज के दिन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं गीत संगीत को। तो चलते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं दिल एक मंदिर फिल्म से, और गीत को आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और इस कार्यक्रम में आपने सुना अभी ये प्यारा सा गीत, और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत आपको और भी इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। लेकिन श्रोताओं, थोड़ी सी बात मौसम को लेकर कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों में भी सुना कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शिमला से ज़्यादा गर्म रहा इस बार मनाली। बिल्कुल, मंगलवार की बात करें तो

जैसे जो भी जिसके पास है वो ज़रूर ऑन करके बैठ रहा है, क्योंकि बिना इनके जीवन मुश्किल लगता है। और ऐसे में जब बिजली चली जाए तब तो बहुत बुरी हालत होती है। और हम बात करेंगे निचले इलाकों की, ऊना पंजाब साइड, तो वहाँ तो बिजली की आँख मिचोली आजकल चली ही रहती है। साथ ही श्रोता, मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मई को राज्य में भारी ओलावृष्टि तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला में देखने को मिलेगा। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान चलने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 30 मई को 7 जिलों में, यानी कि शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में खराब मौसम का येलो अलर्ट रहेगा। 31 मई से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होगा। श्रोताओं, कहीं ना कहीं जब भी थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो हमें लगता है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। हल्की सी बारिश पड़ जाए तो गर्मी में कहीं ना कहीं कुछ पैसे का फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। और ऐसे में हम लोग क्या बोलें, हम यही बोल सकते हैं कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण, ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को हमें जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा। एक एक पत्ता और एक एक बूटा हमारे लिए जीवन है। बिल्कुल श्रोताओं, तो चलिए एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं एक नज़र फिल्म से। और इस गीत को आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

बिल्कुल श्रोताओं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं और कहीं ना कहीं हमें भी इनका हाल जान लेना चाहिए। हम कई बार अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करना भी चाहिए, पेड़ पौधे लगाते ज़रूर हैं, लेकिन वापस दोबारा जाकर उन्हें हमें देखना चाहिए। कई बार हम तो दोबारा जाते नहीं हैं। अगर आप पौधा कोई लगाते हैं तो उसकी तब तक देखभाल कीजिए जब तक कि वो बढ़ने ना लग पड़े। समय पर पानी दीजिए, समय पर उसकी देख रेख कीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि आपको जहाँ भी जगह मिलती है फलदार या हवादार जो पेड़ होते हैं उन्हें लगाएं, ताकि पर्यावरण में हवा जो है वो बनी रहे और हम सभी को गर्मी से राहत मिल सके। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम बात करेंगे आज के दिन की। आज है 27 मई, वेडनेसडे का दिन है। और श्रोताओं, आप सभी को पता है इतिहास में बहुत सारे दिन हमारे ज़रूर किसी वजह से जुड़े हुए होते हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं दर्ज हुआ होता है। तो बात करेंगे 27 मई की। 1805 में श्रोताओं, आज ही के दिन नेपोलियन बोनापार्ट को इटली के राजा का ताज पहनाया गया। साथ ही 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन भी आज के दिन हुआ था। 1967 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह हुआ, जहां 90% से अधिक नागरिकों ने आदिवासियों को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने और उनके लिए कानून बनाने का अधिकार सरकार को दिया। श्रोताओं, साथ ही आज के दिन 1981 की बात अगर हम करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये तो थी थोड़ी सी इतिहास की खबरें, जिसकी वजह से 27 मई का दिन हमारा इतिहास में दर्ज हुआ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, जिसे हम लेकर आए हैं दबंग फिल्म से, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में।

91.2 मेगा हर्ट्ज पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे श्रोता हूँ। और आपको बता दें कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। ये 2 घंटे का सफ़र हम आपके साथ बिताते हैं, बातों के साथ, मनोरंजन के साथ और साथ ही जानकारियों के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे और आज आपके साथ करेंगे ख़ास बात। आज हम बात करेंगे श्रोताओं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस की। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है श्रोताओं, ये सभी जानते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और सोच सकारात्मक है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, याद रखिए, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सफलता और खुशियां भी अधूरी लगेंगी। फिट रहने के लिए बहुत बड़े बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं होती। हर दिन थोड़ा समय योग, व्यायाम, सैर और संतुलित भोजन को देना चाहिए। सुबह की ताज़ी हवा, पौष्टिक आहार और सकारात्मक सोच, ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी बीमारियों से दूर रख सकती हैं। और श्रोताओं, आप सभी जानते होंगे जब भी हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी 19-20 की कमी लगती है, हमें लगता है कि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। उस समय हमारे सामने कितने ही पकवान रख दें या कितने ही प्रलोभन हमें दे दिए जाएं, हमें अच्छे नहीं लगते। तब बस दिल करता है कि हम किसी से बात ना करें, किसी को देखे बिना अपने आप में ही रहें। बिल्कुल, और जब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता है तो यही चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा मन करता है कहीं घूम फिर कर आएं, किसी से बात करें, किसी से फ़ोन पर बात करें, नाच लें, गा लें। तो स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है ये चीज़ हमें तब समझ आती है जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो खास करके आजकल गर्मियों के समय में हम यही कहेंगे कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और अपने स्वास्थ्य पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, पानी की कमी बिल्कुल भी आजकल आने मत दीजिए। वैसे भी श्रोताओं, बहुत सारे फल फ्रूट जो हैं आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, पानी की कमी को रोक सकते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से, और अखिल सचदेवा की आवाज़ है।

श्रोताओ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में ऐसे ही प्यारे से गीत आपको और भी सुनवाएंगे, साथ ही आपके साथ करेंगे बातचीत और आप तक पहुंचाएंगे जानकारियां। लेकिन कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए समय हो रहा है एक छोटे से अंतराल का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो आप सभी यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, समय हमेशा बदलता रहता है और जो लोग समय के साथ चलना सीख जाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज ज़रूरत है कि हम पुरानी रीति रिवाजों और ऐसी परंपराओं को छोड़ें जो हमारी सोच और तरक्की को रोकती है। बिल्कुल, सोच हमें हमारी बड़ी करनी है और पुराने ख्यालातों को कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ना है। साथ ही आजकल की युवा पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा तो अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब आगे बढ़ेंगे और फिर से लेंगे हम कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत, जिसे हम लेकर आए हैं धड़कन फिल्म से। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये प्यारा सा गीत आप सभी के अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। अक्सर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं और कब बिछड़ जाते हैं पता भी नहीं चलता, और ऐसे में जब उन्हें खोजने की कोशिश की जाती है तो वो मिलते भी नहीं हैं। इस गीत को सुनते सुनते मुझे भी एक अपने कॉलेज की बात याद आई, कॉलेज या स्कूल कह लीजिए। स्कूल में एक मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन भी बहुत कम हुआ करते थे। तो जैसे ही हमारी 12th हुई तो उसके फादर की कहीं पोस्टिंग हो गई और उन्हें धर्मशाला छोड़कर जाना पड़ा। खैर, वो समय और आज का समय, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत ज़माने हो गए, और अगर कोशिश की भी जाए, कहीं हम लोग अगर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर कहीं नाम डाल के सर्च करें तो भी वो नहीं मिलते। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी में यादों में रह जाते हैं, लेकिन हाँ, हम मिल नहीं पाते। लेकिन खैर, आजकल कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी दुनिया है, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बस मिलने की चाह होनी चाहिए, और वो चाह अभी भी ज़िंदा है। कभी ना कभी हम अपने दोस्तों से ज़रूर मिलेंगे। तो इस गीत को सुनकर ऐसी बहुत सारी पुरानी बातें मुझे याद आई, आपको भी याद आई होंगी ज़रूर, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे जानकारियों की ओर, आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। जिला मुख्यालय धर्मशाला की नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान धर्मशाला में लोगों को 3 दिनों तक तिब्बती संस्कृति का को जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल श्रोताओं, 3 दिवसीय तिब्बतीयन सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 28 से 30 मई तक किया जा रहा है, जिसमें तिब्बती संस्कृति की छटा बिखरेगी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता तेंजिन लेक्से ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव में तिब्बती संस्कृति व परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। तिब्बती संस्कृति की छटा बिखेरते सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जाएगा, वहीं किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तिब्बत संस्कृति को जानने के इच्छुक लोगों के लिए ये कार्यक्रम काफ़ी सहायक होगा। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन वर्ष को तिब्बती समुदाय कंपैशन ईयर के रूप में मना रहा है, जिसके चलते धर्मगुरु पर बनी फिल्म भी हिंदी में प्रदर्शित की जाएगी। तो ये थी जानकारी जो आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी का आप पूरा पूरा लाभ लेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और फिर से लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, यानी कि सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए अपने अपने रेडियो सेट पर ये प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आजकल के समय में हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर किसी के पास हर बात का जवाब है। हमें कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी किसी से पूछना हो तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे हाथ में जो गैजेट है वो हमें हर चीज़ की जानकारी दे देता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए कि कई बार हमें ये ऐसे ऐसे विचार और ऐसी ऐसी तकनीक भी बता देता है जो कि हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हो, कौन सी खोज करते हो, कौन सा प्रश्न जो है वो पूछने की कोशिश करते हो। तो श्रोताओं, आजकल के युवा या आजकल के बच्चे कह लीजिए, वो बहुत तेज़ है। हर सवाल का अगर जवाब उन्हें जानना हो तो उन्हें भी पता है कि हमें मोबाइल फ़ोन में कहाँ जाना है और कौन सी जानकारी लेनी है। छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है, आजकल अगर उन्हें अपना कोई कार्टून चैनल देखना है या कोई सॉन्ग सुनना है तो वो फटाफट मोबाइल फ़ोन लेते हैं और उसमें वॉइस में उस चीज़ को बोलते हैं और वो फटाफट उनके सामने आ जाती है। तो भाई, कहीं ना कहीं ये मोबाइल फ़ोन जो है वो हम सभी की भाषा समझता है, चाहे हम टोटली ही जुबान में क्यों ना बात करें। तो इस मोबाइल फ़ोन से हमें सतर्क भी रहना है, बच के भी रहना है और इसका सही उपयोग भी हमें करना है। तो हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों पर हमें नज़र ज़रूर रखनी है। अगर हम उन्हें मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन का वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि बदलते इस समय में बहुत कुछ बदल रहा है और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सतर्क होने की भी ज़रूरत है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें रोज़मर्रा अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बातों को फिर से देते हैं विराम और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। मैं हूँ ना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे सोनू निगम और अनु मलिक की आवाज़ों में। लीजिए श्रोताओं, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और इस गीत के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके साथ थोड़ी सी आजकल जिस तरह से गर्मियों का दौर है और आजकल के समय में हम सभी की एक इच्छा रहती है कि कहीं घूमने जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां गर्मी हमें कम लगे और ठंड का एहसास हो। तो ऐसे में हम लोग हिल स्टेशन की ओर जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम जाने की कोशिश करते हैं। करेरी लेक हो गया, त्रियुंड हो गया और हिमानी चमुंडा हो गई, इस तरफ हमारा रुख ज़्यादा होता है। तो करेरी लेक और जो धर्मशाला में और अन्य जो खड्डे हैं वहाँ, उस तरफ हम लोग जो है वो ज़रूर जाने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, गर्मियों से बचने के लिए हम क्या, हमारे छोटे बच्चे भी यही ज़िद करते हैं। छोटा सा समय अगर हमें मिलता है, छुट्टी का दिन मिलता है, तो हम लोग यही करते हैं कि चलते हैं और गर्मी से बचने के लिए वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, हम जाते तो हैं, लेकिन ऐसे में कई बार ऐसे अनचाहे हादसे जो हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि यहाँ ज़रूर गर्मी है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम कैसा है, कब मौसम बदल जाए, उसका कोई पता नहीं होता है। हो सकता है कि वहाँ तेज़ बारिश पड़ जाए और वो पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जब आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में हम जिस भी नदी नाले या जिस भी खड्ड में हम लोग हैं, उस खड्ड का पानी का स्तर भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर आप कहीं जाते भी हो तो पानी से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, बहुत गहराई में ना जाएं। साथ ही श्रोताओं, छोटे बच्चों को अगर आप साथ में लेकर जा रहे हैं तो बड़ों का उनके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी उन्हें अकेला ना छोड़ें और बहुत देर पानी में भी ना रहें। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें ज़रूर रखना है। गर्मी मानते हैं कि बहुत है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए कई बार हमारे किए हुए काम जो हैं वो हम पर उल्टे पड़ जाते हैं। सो अपना ख्याल रखिए और गर्मी से भी बचिए। तो कार्यक्रम में हम अब आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। चलते हैं, सुनते हैं परेश पाहुजा की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और ज़रूर आप सभी इस कार्यक्रम को सुनते सुनते अपने काम भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सफ़र पर भी होंगे। तो ऐसे में श्रोताओं, जब प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिल जाते हैं तो सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। और घर में जो गृहिणियाँ काम कर रही हैं, वो अगर काम करते करते गाने सुनेंगी तो उन्हें काम करने का भी पता नहीं चलता है। बहुत सारे श्रोताओं हमारे ऐसे श्रोता हैं जो कई बार हमें मिलते हैं, चाहे उनकी छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन रेडियो गुंजन धर्मशाला जब वहाँ बजता है और हम उनसे पूछते हैं कि आप ये कार्यक्रम सुनते हैं क्या, कहते हैं हाँ हम तो पूरा दिन यही चलाए रखते हैं और अच्छा लगता है हमें प्रोग्राम। और जब हमें ये सुनने को मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और इसके साथ दिल लगाए रखते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स को लेकर आएँ, प्यारे प्यारे गीत लेकर आएँ और नए नए कार्यक्रम आपके समक्ष हम रखें। तो कहते हैं ना कि प्यार जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, हमारे श्रोताओं का प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यही सोच हमें आगे बढ़ाती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, दिल है तुम्हारा। इस फिल्म का गीत अब लीजिए, सुनिए अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार शानू की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और आपने अभी सुना ये गीत। इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे जानकारियां भी, गीत भी सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहां रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम में, तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में इस अंतराल के बाद पहले चलते हैं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और उसके बाद हम करेंगे आपके साथ बातचीत। किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है श्रोताओं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, गीत जो है वो हम लोग सुनते हैं और कई बार हमें लगता है कि ये सैड सॉन्ग है, ये अच्छा सॉन्ग है, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि सैड सॉन्ग हम तब सुनते हैं जब हम सैड होते हैं। हर गीत का अपना ही आनंद होता है, अपने ही एक प्यार होता है, और इन गीतों को जब भी सुना जाए अच्छे लगते हैं, चाहे मूड अच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन श्रोताओं देखिए, ये जो गीत है ये अपने टाइम का बहुत ही मशहूर गीत रहा है और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को ज़रूर ये कभी ना कभी गीत सुनाया होगा, क्योंकि पुराने दिन जो है वो बिल्कुल याद आ जाते हैं और ऐसे गीत आज भी हर किसी की जुबान पर होते हैं और जब हम आपको सुनवाते हैं तो ज़रूर आप भी इन गीतों को गुनगुनाते होंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि गीतों को अपनी लाइफ में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए, गीतों के साथ ज़िंदगी और हसीन हो जाती है। कोई भी काम कीजिए, कहीं भी रहिए, लेकिन हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े रहिए और साथ ही गुनगुनाते रहिए इन प्यारे प्यारे गीतों को। तो श्रोताओं चलिए फिर से गुनगुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। इस गीत के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। श्रोताओं, रेलवे ने निकाली हैं 1644 नौकरियां। इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट बनाने के लिए 10वीं के अंकों और ITI के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा। दोनों के औसत प्रतिशत के आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही श्रोताओं, भारतीय नौसेना में भी जॉब बिना लिखित परीक्षा सिलेक्शन होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्वाइन इंडिया नेवी government.in पर जा सकते हैं। JOININDIANNAVY.GOV.IN इस पर आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं रोज़ा फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमने बात की राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस पर। हर साल मई के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है। ये दिन मुख्य रूप से बुजुर्गों को एक सक्रिय, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। ये वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को नियमित व्यायाम और सैर, योग जैसी आसान गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो साथ ही श्रोताओं, इसके साथ हम यही कहेंगे कि हमें भी अपने बुजुर्गों को ज़रूर उत्साहित करना चाहिए ऐसे दिवस पर योग प्राणायाम करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है। तो श्रोताओं, अब चलते चलते हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। छाया फिल्म से ये गीत लिया है और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आपके अपने रेडियो सेट पर।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चर्च से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

1.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

102 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इतना सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: जैसे
1: चौकन्ना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और इस बदलते मौसम के साथ अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। उसी तरह से हम भी आप सभी का ध्यान रखते हुए हर हफ्ते आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो यही प्रयास हमारा भी रहता है और इसी प्रयास की कोशिश में हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं जानकारियों के साथ, बहुत ही खास जानकारियों के साथ। तो सबसे खास बात कि ये कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ते हैं हर हफ्ते इस खास जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अपने खास मेहमान मनोवैज्ञानिक प्रियशी जी का स्वागत करते हैं हमारी इस खास बातचीत में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो मैम, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। आपके साथ जुड़कर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही उत्साह चेहरे पे रौनक जो है देखने को मिल जाती है जी। तो अब हम हर हफ्ते हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास बातचीत लेकर आते हैं ताकि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो अपने आप को अपनी जो है शारीरिक प्रॉब्लम हो चाहे

0: मानसी को कोई भी हो उससे अवेयर हो सके और वो जान सके कि आखिर हमारी जो ये आसपास की जिंदगी है उससे हटकर थोड़ा सा अपना आप भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोगों को जागरूक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये जानकारियां महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस खास बातचीत का। तो मैम, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो हमारी नींद है तो वो किस तरह से हमारे लिए हमारी जिंदगी में जरूरी रहती है, क्योंकि ये जो समय है आज का समय बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सभी का, तो ऐसे में हम अक्सर हर चीज की एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नींद को अवॉइड कर देते हैं। तो उसके बारे में हमने अपने दोस्तों से बहुत ही खास बातचीत की थी, तो थोड़ा सा एक हम छोटा सा रिकैप करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
1: जी बिल्कुल रुचिका। देखिए, नींद आज के समय पर एक लग्जरी बनता जा रहा है जबकि ये एक नेसेसिटी है। तो जब तक इंसान इस बात को अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक नींद से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में बनी रहेंगी। नींद से परेशानी होने के बाद सिर्फ नींद की परेशानी नहीं रह जाती, क्योंकि ये आने वाली कई बीमारियों को न्योता देती है।
0: जी,
1: ये अपने आप में तनाव से तो जुड़ी है ही, लेकिन अगर नींद में परेशानियां आती हैं तो उसके साथ साथ और भी कई परेशानियां आती हैं, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करी जाए, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात करी।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि स्लीपिंग का पैटर्न आप सभी वैसे जान चुके हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये साइकिल रहता है, क्योंकि पहले तो हम ये नॉर्मली जानते थे कि बस सोना है और उठ जाना है, बस सोना है उठ जाना है ना। और लेकिन जब आपसे बात की और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करके हमारे दोस्तों को बताया कि ये एक पैटर्न होता है जो कि एक साइकिल की तरह रिपीट होता है और पूरा ये स्लीपिंग पैटर्न हमें पूरा करना होता है।
1: राइट right.
0: और उसी कड़ी में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर की।
1: जी,
0: तो दोस्तों, आज की हमारी ये खास बातचीत स्लीपिंग डिसऑर्डर की रहने वाली है। आप सभी जानने वाले हैं कि आखिर स्लीपिंग तो हमने जान ली, लेकिन ये डिसऑर्डर जो इसके साथ जुड़ गया है शब्द, इसका क्या अर्थ है, इससे हमें क्या जानने के लिए मिल सकता है और इससे हम कैसे जो है खुद को दूर रख सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर पहले तो डिसऑर्डर है क्या और ये स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है।
1: जी रुचिका, देखिए, डिसऑर्डर शब्द का मतलब है कि कोई चीज जो अपने नेचुरल ऑर्डर से ऑफ बैलेंस हो चुकी हो उसको डिसऑर्डर कहेंगे। जब हम लोग मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि नॉर्मली आम तौर पे जो चीजें होती हैं अगर वो बिहेवियर्स या वो फिजिकल साइंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रिक्वेंसी आम से ज्यादा या आम से कम हो जाए तो वो बहुत ही चिंताजनक बात होती है। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन में या हमारे ऑक्यूपेशनल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में या फिर हमारे रिलेशनशिप्स में पड़ने लग जाए तो वो भी बहुत गंभीर बात होती है। और तीसरा कि स्ट्रेस की वजह से हमारा ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट आने लग जाए और आप इन परेशानियों को जितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें वो सॉल्व ना हो पाए। आप अपने दोस्तों से बात करें पर वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट होने लगे, आप ओवरथिंक करके उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें और वो ओवरथिंकिंग कभी खत्म ही ना हो।
0: जी,
1: तो जब इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं व्यक्ति को तब ये बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करे, क्योंकि ये अपने आप में एक डिसऑर्डर का साइन होता है। सो इससे पहले बहुत देर हो जाए ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हम जानते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए अगर आपको इन तीन चार चीजों में से कोई भी एक पॉइंट भी लगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है तो उसको आप बचा सकते हैं।
0: जी,
1: नाउ कमिंग टू स्लीपिंग डिसऑर्डर। देखिए, स्लीप के बारे में हम लोगों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी थी पिछले प्रोग्राम में।
0: जी,
1: जैसे कि स्लीप वेक साइकिल होती है और ये साइकिल हर 90 मिनट्स में रिपीट होती है। इस साइकिल के 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, NREM एंड REM। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में या तो आपकी जो फेजेस हैं, ये जो फोर फेजेस हैं, उसमें डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाए, या फिर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप है या क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। तो जब आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाए तब समझ जाइए कि वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है।
0: तो मैम सबसे पहले अभी आपने ये कहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में, तो इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग या क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग। तो हमारे दोस्तों को ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह से हमें फेस करना पड़ता है या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है।
1: देखिए यहाँ पे दो चीजें, या तो हम प्रिवेंटिव मेजर की बात कर रहे हैं या फिर हम ये समझें कि ये समस्या आ कहाँ से रही है, राइट। तो पहले समझते हैं कि समस्या आ कहाँ से रही है, जिससे कि प्रिवेंटिव हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसकी जो समस्या शुरू होती है वो कुछ यूं कि जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से इंसान एक ओवरथिंकिंग के फेज में चला जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो रात का टाइम होता है, रात के समय पे लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो एक तो जो हमारा माइंड है, माइंड भी तीन तरह के माइंड है हमारे, लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड एंड वाइज माइंड। तो रात के समय पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं कि हमारा इमोशनल माइंड ज्यादा डोमिनेंट रहता है, जिसके कारणवश इंसान की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है और थॉट प्रोसेस भी, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग के कारण वो एक लूप में चला जाता है और ऐसे करके वो अपनी स्लीप को डिले करता जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज जहाँ से स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं, क्योंकि स्लीप के लिए जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए पीस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट
0: है।
1: देखिए लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेन वेव्स के बारे में भी बात की थी, तो यानी कि जब तक व्यक्ति रिलैक्स स्टेट में ही नहीं है, यानी कि ब्रेन में अल्फा वेव ही नहीं है, तब तक इंसान थीटा वेव तक कैसे पहुंच पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि वो नींद में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का रिलैक्स होना, पीस में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर तनाव है और अगर ओवरथिंकिंग है तो ये प्रॉब्लम जन्म लेगी ही लेगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज के समय पे कई लोगों का जो डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट का काम चलता है, जिसकी वजह से उनको अपनी स्लीप को डिले करना पड़ता है, तो वहां से भी प्रॉब्लम जन्म लेती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन सिंक विथ नेचुरल साइकिल। तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है वो हमारे जो नेचर की एक डे टाइम साइकिल है, डे और नाइट की जो साइकिल है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, उससे हमारे ब्रेन के केमिकल्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो अगर हम दिन को सो के रात को जग रहे हैं काम की वजह से किसी भी कारणवश, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है उस पे फर्क पड़ेगा, विच विल लीड टू फिजियोसाइकोलॉजिकल इश्यूज।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम इस स्टेज पे जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि स्लीपिंग में जा ही नहीं सकते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस खास बातचीत के साथ। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो बहुत ही प्यारी सी आवाज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, आप सभी के मन की ओर। हमारे बहुत सारे प्रयास हैं, लेकिन एक तो सबके लिए आम बात है। तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के इस बहुत ही खास बातचीत में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर की। तो मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से एक जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल है वो प्रोसेस करता है, किस तरह से हमें उसे पूरा करना होता है, किस तरह से हमें अपनी स्लीपिंग के लिए अवेयर होना होता है। लेकिन अभी मैम ने बात की थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि किस तरह से क्वांटिटी जो है हमारी स्लीपिंग को, मतलब कि स्लीपिंग डिसऑर्डर कहें या स्लीपिंग को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से ये हमारे इसमें प्रोसेस में आती है।
1: देखिए, क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पर ड्यूरेशन से। तो अगर कोई व्यक्ति है जिनका स्लीप का ड्यूरेशन कम या ज्यादा है
0: जी,
1: तो उसको स्लीप डिसऑर्डर बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये जो एक एक्सपीरियंस है ऑफ लो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप या हाई ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक रहता है यदि परसिस्टेंटली, तो वो डिसऑर्डर का फुल ब्लोन एक रूप ले लेता है। अब देखिए, जो व्यक्ति जिनको नींद कम आती है या फिर बोले उनको नींद में जाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसा कहें कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है अगर वो 3 से 4 घंटे है, कम है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम सिर्फ 2 घंटे ही ढंग से नींद आई है, तो ऐसे लोगों का ये जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी कि कम स्लीप, कम नींद आती है इसमें। और दूसरा होता है हमारा हाइपरसोम्निया, जिसमें ज्यादा नींद आती है। तो इसमें एक्सेसिव स्लीप की डिमांड करती है बॉडी और माइंड, एंड व्यक्ति 10 से 12 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है, वो फ्रेश महसूस नहीं करता। इसीलिए इसको डिसऑर्डर का नाम दिया गया, क्योंकि इतना क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेने के बाद भी व्यक्ति को वो महसूस नहीं हो रहा, वो फ्रेशनेस या रिजुविनेशन महसूस नहीं हो रही है जो उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो उसे हम इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया का, मतलब कि डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं।
1: राइट।
0: तो जैसे कि अभी आपने मैम कहा कि 3 से 4 घंटे मैक्सिमम या मिनिमम है ना किसी को भी, तो कुछ जैसे वैसे तो नेचुरली हमें नींद आती है जब स्टार्टिंग में हम इस प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिफरेंट थिंग्स, जैसे हम वर्किंग में आ जाते हैं, चाहे स्टडी का थोड़ा सा स्ट्रेस हो या फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो या किसी भी तरह का, और वो बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो शायद उसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं। कोशिश भी करते हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन फिर भी वो मतलब बातें घूम फिर के हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। और जब वो सुबह का टाइम होता है, जैसे 3-4 बजे के आसपास का, जैसे आपने कहा कि सिर्फ सुबह थोड़े टाइम के लिए हमें नींद, मतलब मुश्किल से 2 घंटों की नींद हम पूरी कर पाते हैं अच्छे से, तो शायद वो यही टाइम रहता है खासकर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शायद। तो उसे हम एक रूटीन में लाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, तो उसे हम कैसे, मतलब कि एक उसमें सर्कल में ला सकते हैं।
1: देखिए रुचिका, इसमें अगेन स्लीप हाइजीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी
0: जी।
1: देखिए, रात को समय पर नींद आ सके ये एक हैबिट है, तो हैबिट को बिल्ड करना पड़ता है। तो हैबिट को आप बिल्ड कैसे करेंगे? लगातार सेम समय, सेम टाइम पर बेड पे जाने का प्रयास करें, एक ही समय पर, सेम टाइम पर डेली अपने फोन का यूज करना छोड़ दें, सेम टाइम पर खाना खाएं, कहते ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो बेसिकली आपको अपना एक रात का रूटीन बनाना पड़ेगा, रात को अच्छे से नींद आ सके। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका शरीर थका हुआ महसूस करे
0: जी,
1: क्योंकि जब शरीर थका हुआ होगा तभी वो रिलैक्सेशन की डिमांड करेगा, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत लगेगी
0: जी।
1: और इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक व्यक्ति डे टाइम में अपने रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं। आप ऐसे देखेंगे तो आमतौर पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं या फिर जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लोग सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, फिर सोने का प्रयास करते हैं, सो नहीं पाते हैं और लैपटॉप चलता रहता
0: जी।
1: तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डे टाइम पर अपनी सारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि लोग अक्सर शाम को, कई लोग, नॉट अक्सर बट कई लोगों को हमने देखा जो शाम को या रात को जाते हैं जिम करने।
0: बिल्कुल,
1: जो कि इट्स अ बिग नो, क्योंकि जब आप जिम करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को और एक्टिव एक्टिव कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप थक जाओगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी।
0: लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना रहता है
1: राइट
0: कि शाम के समय जब हम जिम पे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी थकान महसूस होगी और शायद हमें नींद आ जाएगी।
1: हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाके, तो अल्टीमेटली जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं। वो अपने मसल्स में सिर्फ टेंशन्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके इंटरनल स्ट्रेस को भी रिलीज कर रहे हैं, यानी कि आपका कॉर्टिसोल कम कर रहे हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द रियलिटी विल बी कि आप और एक्टिव फील करेंगे, एंथुजियास्टिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपलिफ्टेड हैं, तो नींद नहीं आएगी
0: जी।
1: अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो डे टाइम में। तो आप सुबह जाएं एक्सरसाइज करने और आप डे टाइम में अपना दिन अच्छे से बिताएं। शाम को आप नेचर वॉक कर सकते हैं, विच इज रिलैक्सिंग एंड कामिंग एंड ग्राउंडिंग। शाम को आप योगा कर सकते हैं, अगेन कामिंग रिलैक्सिंग
0: जी।
1: तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिनको कैफीन से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कैफीन मत लें शाम को। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत मायने रखता है
0: जी। तो मैम अभी हमने दो डिसऑर्डर की बात की है, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया की। तो इस डिसऑर्डर को जब हम फेस करते हैं, जैसे कि इंसोम्निया में बहुत कम नींद आती है और हाइपर में कि एक्सेसिव में नींद आती है, तो जब हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कोई भी हमारे दोस्त या किसी भी तरह से, तो उसे दूर करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए कैसे हम क्या कर सकते
1: हैं? देखिए ये स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके हैं आपको
0: जी।
1: इसके अलावा ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ देयर आर थिंग्स विच दे आर डूइंग जो उनको नहीं करनी चाहिए, या देयर आर थिंग्स जो उनको परेशान कर रही हैं। तो कई लोग होते हैं जो सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, अल्कोहल सिगरेट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेस में है और आपको ओवरथिंकिंग चल रही है रात में और उस वजह से आप नहीं सो पा रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि देन स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस यूं ही नहीं हैंडल होता है। अगर हो रहा होता तो आप उस समस्या में नहीं जाते, यानी कि देर आर थिंग्स, देर आर वेज एंड स्किल्स एंड टेक्निक्स जो आपको अभी नहीं पता इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू। उसके लिए आई रिकमेंड कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, और आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए रुचिकर, स्ट्रेस के पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं जो लाइफ से रिलेटेड है
0: जी।
1: एंड स्ट्रेस या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करने के भी अपना एक प्रोसेस होता है। आप जब तक अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, योर माइंड विल नेवर बी एट पीस, एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टेंट फाइट ऑफ थॉट्स, जिसके लिए काउंसलिंग सेशंस या फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से हम इस डिसऑर्डर के बारे में जान सकते हैं।
1: आप अपने नॉर्मल रूटीन से कम सो पा रहे हैं, भले ही वो 4 से 5 घंटे भी क्यों ना, लेकिन आप इतना सोने के बाद, देखिए कई लोग 4 घंटे सोते हैं पर वो फ्रेश फील करते हैं
0: बिल्कुल,
1: उनका वो रूटीन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंसोम्निया है। देखिए डिसऑर्डर का मतलब है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उससे आपको वो परेशानी, वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो यानी कि अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं जबकि आपके 7-8 घंटे सोने की आदत थी
0: जी,
1: अब आप 5 घंटे सो रहे हैं पर उसके बाद आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा, आपको टायर्ड, आपको फटीग, आपको एंग्जियसनेस फील हो रही है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवरथिंकिंग चलती जा रही है, शरीर में हमेशा थकान और शरीर हमेशा टूटा टूटा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, मोटिवेशन लैक हो रही है, तो यानी कि अल्टीमेटली फोकस क्या है? फोकस है कि जितने भी घंटे की आप नींद ले रहे हैं पर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे और आपको उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब ये तकलीफ होती है तब उसको हम डिसऑर्डर का रूप देते हैं
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, हर किसी के साथ ये नहीं होता, लेकिन हाँ जब ये सारे सिम्टम्स जो मैम ने अभी बताए आपको कि आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बॉडी में आपको डिस्टर्बेंसेस जो है फील होनी शुरू हो जाती है, तो तभी हम उसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो यही एक्सेसिव हो चाहे कम हो, इसी तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी इस बातचीत को कार्यक्रम में आगे की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही खास बातचीत, स्लीपिंग डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जान रहे हैं कि किस तरह से स्लीपिंग हमें डिस्टर्ब करती है, किस तरह से जो है स्लीपिंग एक भयानक रूप ले लेती है, हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो यही सब जानने के लिए आप सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मैम से और बहुत कुछ जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं, जानते हैं और अपने आप को अवेयर करते हैं। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कम नींद आती है तब भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, या सबसे बहुत ज्यादा ही नींद हम ले लेते हैं तब भी हमारी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, या हम उतनी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि जब वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हर किसी के साथ कोई साथ में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग अकेले भी रहते, बुजुर्ग की हम बात करें, तो उस तरीके से जब उन्हें बहुत गहरी नींद में जब दबाव मतलब एक तरह से महसूस होता है, जब उन्हें बहुत एक भयंकर सा सपना वो देख रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि कोई हमें मार रहा है या कोई हमें हर्ट कर रहा है, तो इस एक्सपीरियंस को हम स्लीपिंग डिसऑर्डर में लेंगे या किस तरह से इसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? मतलब
1: देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने REM स्लीप में होता है, यानी कि जो लास्ट फेज ऑफ स्लीप है, उसमें हमारा जो बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो अल्टीमेटली हमारे नेक के नीचे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस को शट डाउन कर देता है, यानी कि वी कैन नॉट मूव आर बॉडी, जिसकी वजह से अगर उस फेज के दौरान हमारी आंख खुल जाए या हम अवेयरनेस में आ जाए, क्योंकि ये एक लास्ट फेज होता है, रिमेम्बर स्लीप वेक का एक साइकिल है जो रिपीट होता है 90 मिनट्स में, तो REM फेज के जस्ट बाद NREM का फर्स्ट फेज आ जाता है, जिसमें डेल्टा वेव से शिफ्ट आता है अल्फा वेव एंड थीटा वेव में। तो अगर अल्फा वेव आ गई तब जब REM फेज खत्म ही नहीं हुआ, ऐसे में व्यक्ति जग जाता है, यानी उसकी आंख खुल जाती है, पर क्योंकि उसके अंदर डेल्टा ब्रेन वेव भी प्रेजेंट है तो वो जो सपना देख रहा था वो कंटिन्यूड रहता है। ऐसे में कई लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। तो स्लीप में बेसिकली बोला जाता है कि जो भी सपना हम देख रहे हैं अल्टीमेटली वो हेलुसिनेशंस ही होते हैं, क्योंकि वो हम आंख बंद करके हेलुसिनेट कर रहे हैं, बिकॉज सपना एकदम सच लगता है जो कि रियल नहीं होता, इसीलिए उसको हेलुसिनेशन
0: जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जब हमें वो सपना मतलब कि देख रहे होते हैं हम, और जैसे लग रहा होता है कि कोई हमें मार, और हम रियल में ना चिल्ला रहे होते हैं,
1: डेफिनेटली
0: नींद में ही हम ना ऐसे मतलब कि जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, और जब तक कोई दूसरा पर्सन उन्हें उठाता नहीं है तो तब तक वो उसी एक पोस्चर में और उसी दर्द में जो है चिल्लाते रहते हैं।
1: राइट। तो इसमें देखिए, स्लीप पैरालिसिस में जो एक शिफ्ट आता है साइकिल का, ये उसमें डिसऑर्डर आ गया, वो ऑफ बैलेंस चला गया, ब्रेन वेव जिस समय पर जब होनी चाहिए थी तब की जगह वो पहले आ गई, तो अब जब व्यक्ति उठा है पर उसका नेक के नीचे के वॉलंटरी फंक्शंस तो अभी भी शट डाउन है ना, और सपना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो जो सपना देख रहे थे वहां का कोई कैरेक्टर या वहां की सिचुएशन रियल है। समटाइम्स पीपल कैन ऑल्सो विटनेस एंड सी समवन स्टैंडिंग क्लोज टू देम, या फिर कई बार उनको लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है ये एक्सपीरियंस कि ये व्यक्ति में बहुत एंजाइटी क्रिएट कर देता है, डर क्रिएट कर देता है, और एंजाइटी का मतलब होता है अननोन फियर। तो यानी कि डर किससे लग रहा है इंसान को ये भी नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता।
1: तो अननोन या अनसर्टेनिटी इंसान के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा डिसकंफर्टिंग होती है, और क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा है, सो पर्सन फील सो हेल्पलेस कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है ये और ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट इंसान ऐसी ही स्टेट में रहता है जो कि बहुत टॉर्मेंटिंग उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी भी इस बात को इस समय समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है,
1: और लोगों को क्योंकि पता नहीं होता तो इसलिए उनको लगता है कि कोई भूत की प्रेजेंस है या इस घर में कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, तो लोग अक्सर इस जो भी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती ना रुचिका, लोग उसको भूत से जोड़ देते हैं, क्योंकि भूत भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी लोगों ने बना रखी है कि उनको नहीं पता कि वो खुद क्या है, तो इसलिए हर वो चीज जो समझ में नहीं आती वो भूत से लिंक हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप सबका ये जानना और समझना कि कैसे स्लीप पैरालिसिस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्योरली साइंटिफिक कॉजेस की वजह से हो रहे हैं।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से हम
1: ये देखिए डायरेक्टली लिंक्ड होता है स्ट्रेस से जो भी तनाव है, क्योंकि देखिए स्लीप इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल दैट हैज टू अकर, जिसकी वजह से अगर कोई भी नेचुरल चीज डिस्टर्ब है तो मतलब देर इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। हमारा ड्रीम, जो भी हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से आता है, जिसकी थ्रू हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे कम्युनिकेट करता है कि देर आर थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, पर हम अपने माइंड को उसकी आवाज को दबाना और उससे एस्केप करना या उसको अवॉइड करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं, विच इज सो रॉन्ग एंड सो अनहेल्दी फॉर ईच वन ऑफ अस, बट येट ड्यू टू अनअवेयरनेस वी टेंड टू डू इट, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ती ही जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए जो भी स्ट्रेस है या जो इमोशनल सप्रेशन है उसको ना करके, उसको छोड़ के अपने स्ट्रेस को एड्रेस करना जरूरी है, अपने इमोशनल सप्रेशन की जगह उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लाइफ में उनको रिजोल्व करना जरूरी है। जैसे जैसे वो चीजें रिजोल्व होंगी वैसे वैसे स्लीप की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहेंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब तक आपके माइंड में वो बातें चलती रहेंगी, जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि मैम ने कहा सबसे पहले तो हमें ये बहुत जरूरी है जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एड्रेस करना, स्ट्रेस है उसे भी अच्छे से जानने की किस तरह से क्यों और क्या रीजंस है, क्योंकि जब तक हम इससे फेस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो तब तक वो हमें परेशान करते ही रहेंगे और ये फिर स्लीपिंग का जो डिस्टर्बेंस है वो हमें हर टाइम जो है वो फेस करने को, और कहीं ना कहीं फिर बीमारियां, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है तो वो बस नींद ही डिस्टर्ब होगी, नींद ही नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां जो है फिर
1: वो हमें भी आएंगी। आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करेगा, आप सही जजमेंट्स नहीं ले पाएंगे, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इन सब की वजह से इंसान फिर और परेशान ही होता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उसकी जॉब में परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ जाता है, रिश्तों पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है,
0: चिड़चिड़ा बिल्कुल,
1: मूड इम्पैक्ट होता है। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद वन अनदर कि स्लीप का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: जो कि आज के समय में बहुत ही कम है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चों में तो खास करके बहुत ही कमी देखने को मिल रही है कि वो अक्सर अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैम बच्चों को हम क्या रीजन दे सकते हैं, मतलब बच्चों को जो नींद पूरी नहीं हो पाती है?
1: देखिए बच्चों के लिए तो आज के समय पे सबसे बड़ा कारण है उनका फोन और उनके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल। जैसे जैसे एक पेरेंट अपने छोटे बच्चे को रूटीन में डालेंगे ना, वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि एवरी बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। आप बच्चे को सिखा सकते हो और बच्चा, क्योंकि बच्चा इज लाइक अ मोल्ड, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, यू नो वो एक सॉइल की तरह होता है, वो एक मिट्टी की तरह है, आपके ऊपर है ये कि आप उसको कैसे किस तरह का एनवायरनमेंट और किस तरह का लाइफस्टाइल में उसको ढालना चाहते हो
0: जी। और

0: ना होता है कि अगर वो फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि गलत है। लेकिन अगर वो उसी समय जो है लेट नाइट तक, चाहे वो 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब भी, 2-2 बजे, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि 2-2 बजे तक सोते नहीं है, वो 2 बजे सोना है उन्होंने, तो वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं या फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये पढ़ाई कर रहे हैं।
1: देखिए, पेरेंट्स में ना एक बहुत स्ट्रांग सोच ये रहती है कि अगर रात को बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, हम उसको मेहनत से नहीं रोकेंगे
0: जी,
1: क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन अगर आप इस आज के टाइम के दौर पे अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के साथ चीजों को देखें और समझें, तो आप ये समझिए कि व्हाट आर यू पुटिंग एट कॉस्ट, यानी कि आप बच्चे की नींद पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि नींद के दौरान हर व्यक्ति में उनकी ब्रेन सेल्स रिज्यूविनेट होती हैं, हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो रीडेवलप होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तभी बच्चे को चीजें याद भी रहेंगी। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पर सो नहीं रहा है, नींद नहीं पूरी कर रहा है, उसको चीजें याद भी नहीं रहने वाली हैं
0: जी।
1: और फिर उस चीज को याद रखने के लिए लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं रुचिका,
0: बिल्कुल,
1: और फिर पेरेंट्स के लिए वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज पेरेंट्स आप ये मत सोचिए कि बच्चा रात को पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आप ये सोचिए कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो काम बच्चे के लिए उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और जो नेचुरल चीजें हैं वो कर सकती हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। अब इसमें क्या ही फायदा है कि बच्चे ने 2 साल या 3 साल 4 साल मेहनत करी, फिर वो कॉलेज में पहुंचा, और कॉलेज में जाने के बाद अब जब उसको नींद नहीं आती है तो वो रात में फोन चलाता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं, और फिर वो सब्सटेंस लेकर अपनी नींद पूरी करता है, या सुबह उठकर कॉलेज नहीं जा पाता है, या फिर अपने यूथ में ही वो इतना फटीक फील करने लगता है कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तो इससे एज पेरेंट्स आपने क्या ही अचीव कर लिया। पर आप सोचिए, अगर आपका बच्चा 5-10% कम नंबर ले भी आए यदि, बट उसका जो एक रूटीन है या उसकी जो एक गुड हेल्थ है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो बुरी आदतों से भी दूर रहेगा। सो व्हाट वुड यू प्रिफर? तो हम तो यही बोलेंगे एज पेरेंट्स को कि आप ये मत सोचिए कि एकदम से बच्चा एकेडमिकली पीक ले ले और उसकी मेंटल हेल्थ से अगर प्राइस पे करना पड़ रहा है बच्चे को तो वो करे, क्योंकि उसके बाद मेंटल हेल्थ खराब होने के बाद वो उसके रिलेशंस में भी इम्पैक्ट आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशन
0: जी।
1: सो यू हैव टू थिंक कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रही थी और आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि अक्सर हम बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स को वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, 2 दिन लगाकर हमने पढ़ाई कर ली और 1 मंथ लगाकर हमने बिस्तर पकड़ लिया, तो Definitely. उसका फिर क्या ही फायदा रहेगा,
1: या
0: तो
1: फिर पढ़ लिया इतना और एग्जाम टाइम पे जाके ब्लैकआउट हो गया, अब याद ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा भी होता है बच्चों के साथ बहुत।
0: जी जी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए और एक रूटीन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में अपने शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना है और एक समय है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से गीत के बाद।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस बहुत ही गंभीर सी और खास बातचीत के साथ। तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी भी इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं मैम से और बहुत सारी जानकारियां स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैम, अभी आपने बात की स्लीपिंग पैरालिसिस की, तो वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दोस्तों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नींद में, जब गहरी नींद में होते हैं या जैसे भी है, हम कहीं खो जाते हैं नींद नींद में, तो हम कई बार ना रोने लग जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिलेट करेंगे इस मतलब कि डिसऑर्डर के साथ या स्लीपिंग के साथ? किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या ये क्यों होता है हमारे साथ?
1: देखिए, आप जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, इसमें अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो कोई सपना देख रहे होते हैं और उनको वो इतना रियल लगता है कि फिर वो अचानक से जब उठते हैं तो उनको वो एंग्जियसनेस रहती है, उनको वो घबराहट, वो डर रहता है जो भी उन्होंने सपने में देखा होता है, और फिर उनको अचानक से रोना आ जाता है। तो बेसिकली, और ऐसा भी होता है कि असली में, मतलब सपने में भी रोए और असली में भी रोने लगते हैं, और फिर आंख खुलती है और इंसान जो है वो बहुत घबराया हुआ होता है, दिल की धड़कनें तेज हुई होती हैं। तो ये जो होता है, ये थोड़ा स्लीप पैरालिसिस से थोड़ा हटके होता है, इसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। तो ये नाइटमेयर डिसऑर्डर है। नाइटमेयर्स में बेसिकली जो हमारे सपने होते हैं वो इतने खौफनाक और दर्दनाक होते हैं कि वो हमारा जो कोई भी पास्ट में वूंड रहा है या पास्ट का कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें बार बार आता है। ये काफी ज्यादा लिंक्ड है विद PTSD, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। जो लोग अपने पास्ट में एक बहुत स्पेसिफिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको उसी ट्रॉमा से रिलेटेड, उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ, लाइक नाइटमेयर थोड़ा अलग है देन स्लीप पैरालिसिस, बट यस, दोनों में ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है।
0: जी बिल्कुल, तो ये भी हमारी स्लीपिंग का पार्ट है। तो अक्सर जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स हम में आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी नींद का, हमें वही फॉलो करना चाहिए, जो क्योंकि एक बार हमने अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलती रहती है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि चाहे आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नींद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, क्योंकि नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर वे में लेना, जो साइकिल है स्लीप वेक साइकिल है, उसे पूरा होने के लिए समय लगता है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो उसी तरह से नींद भी उतनी ही जरूरी है। फिर हमें डार्क सर्कल आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं क्या लगाएं, क्योंकि हमारे फेस का थोड़ा सा वो फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं हम देखने में, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर फिर अपनाने शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस स्टेज तक जाएं ही ना,
1: बिल्कुल
0: ना, आप पहले ही सतर्क हो जाए।
1: Exactly, आप प्रॉब्लम को रूट लेवल से सॉल्व करें, उसकी गहराई को समझें। और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, नींद एक लग्जरी बनते जा रहा है, तो लग्जरी नहीं, वो नेसेसिटी है। इस बात को समझें और अपने जीवन में अच्छे से नींद को प्रायोरिटी दें।
0: जी बिल्कुल। पर दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपिंग, नींद कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सा शब्द है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको इतनी जल्दी जल्दी में तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में ये जानकारी देना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट जो है हम जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, है ना? तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन आज की इस हमारी खास बातचीत से जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, और अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर, हमारे मनोवैज्ञानिक मैम है, तो आप इनके साथ जो है जुड़ सकते हैं। और अगर जरूरत है आपको सेशन लेने की, काउंसलिंग सेशन की, तो जरूर दोस्तों बिना हिचकिचाहट जो है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेशन लेने चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी प्राइवेसी रखी जाती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी तक नहीं पहुंचाई जाती, तो पूरा आपका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, पहल आपको करनी होगी। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये स्टेप आपको लेना होगा। तो हमारे सेंटर का पता रहेगा,
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, धर्मशाला, और फोन नंबर है 9354134057 ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी तक नंबर भी पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई भी कमी आपको फेस करनी पड़ रही है तो फटाफट से फोन उठाइए, डायल कीजिए और बात कीजिए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। और अगर सवाल है जो हमें बात करनी चाहिए आप सभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक या और लोगों तक आप चाहते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारी जो है इस पे यूट्यूब पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एडिशन करनी चाहिए या किस तरह से हमें बातचीत और इसमें एड ऑन करनी चाहिए। तो फिलहाल समय हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की ये खास बातचीत आप सभी ने एंजॉय की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सभी के साथ फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, इसी स्लीपिंग डिसऑर्डर की नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चौसे
1: चौकन्ना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम कब आए?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

0: दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।
1: Rise.

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचि।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो दिनचर्या धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं।

अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूंछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 저스의
1: 저카이나
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यह तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम कब आए?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

ਕਾਨਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ 2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਈ ਕਰੀ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋਈ ਮਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਤੇ ਹੈ ਕਨੇ ਇਸੀ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੀ ਨ ਕਨੇ अजकने दिन की अहम गल करना अजकना जोड़ा दिन है बुधवार का ये दिन है कने दिनांक की अहम गल करना 27 मई 2026 तो दिन की शुरुआत तो सकारात्मक सोच कने की होनी है कने इस टाइम भी सकारात्मक सोच कने ही अपना जोड़ा जिंदगी का सफर है या जोड़ा अजकना समय है उस जो बिता देने न सकारात्मक सोच कन्ने सारे काम अहां करदे न तां अहां दा जेड़ा समय है सभी अच्छे ने जांदा है कन्ने अहां अपने जेड़ा काम मन सभी सकारात्मक सोच कन्ने करी पांदे न तां तुसीं सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकदे कन्ने सफर दा जेड़ा समय तुसीं तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़िया क्योंकि तुहां जो भी इंतज़ार था कि कालू दिया 2 बजदे न कने कालू दिया हाँ इस कार्यक्रम करने जुड़दे न 2 बजी करी 4 मिनटा कार्यक्रम चोइया न कने इंतज़ार जेड़े से तुहां दा बिल्कुल ख़त्म है तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ा कने हाँ जेड़ा तुहंदा इंतजार करदे न तुहां भी इंतजार करदे न कि 2 कालू दिया वजदे न कने हाँ इस कार्यक्रम कन्ने जुड़दे न जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है पहले तो तुहां सारे ही इस नंबर जो नोट करा नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टैक्स मैसेज करी सकदे या वट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने जेड़ा तुहंदे प्यारे प्यारे पहाड़ी गीत हैं से इस कार्यक्रम दे सफ़र च तुहां सुनी सकते सफ़र दी शुरुआत अहां तुहां सारे जो पता है कि प्यारे दे गीत कन्ने करदे न जालू गीत संगीत अहां दी गलबात कन्ने जुड़ी आंदा है तो इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है तहां भी सफ़र दी शुरुआत या अपने इस कार्यक्रम दा आगाज़ कर देना इस प्यारे दे गीत कन्ने

0: ये तो हाँ सारे तो अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत शुरुआत हाँ इस गीत करने की थी कने फिरी ते जेड़ा स्टूडियो दा नंबर है से तो हाँ तक पहुँचाई दे न तो हाँ ज़रूर इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है नंबर ज़रूर तो हाँ तक पहुँचाना है नंबर तो हाँ सारे नोट करा नंबर है 701-811-7091 नंबर तो हाँ तक पहुँचाई तो है कने पहले जिड़ा श्रोता न से हाँ करने जुड़ चुके हैं कर दें ती ना करने गल बात हेलो
1: हेलो नमस्ते जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हाँ दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: हाँ जी हाँ ठीक ठाक है तुम बोला
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तो हाँ कुछ ते बोला दे करे तो हाँ दा ना क्या है जी
1: ना तुम रोट क्या ते बोला था कि ना रमेश मेरा ना
0: जी रमेश जी क्या काम कार तो हाँ लगाया क्या करा दे
1: कुछ नहीं बस तू लगी है मेरा ब्रांड डायरेक्टर ने मेरा गलबात चलने से सी रहे ना
0: जी जी
1: कहाँ तो आज इलेक्शन हो गए
0: जी आहाँ दे ताली नहीं होए जी माहौल बनिया तंगलोटी आली साइड
1: अजकल तो है पता ही है बोर्ड रुक चुका है जब मुंह में चकलाने का दिन तो मैं अपनी मर्जी से खराब करता पीछे वो लाने बात की तो कौन पता ही है अजकल
0: जी जी
1: अब मुंह में नहीं खोल रहा बोर्ड
0: जी
1: पढ़े लिखे बंदे मैं इतने कभी नहीं जाने को बिना दुश्मनी जाने को उसकी
0: जी चलो सहता तो हाँ सही बोला दे पर अपना जेड़ा वोट ऐसे अच्छे उम्मीदवार जो देना चाहिए था ना जी
1: जी हाँ जी बिल्कुल सही बात है
0: जी से तो हाँ भी समझदार है ना बाकी जनता भी समझदार है ना जी
1: बिल्कुल आजकल करना अभी तक कर दिया नहीं समझा समझे तो लोग तो समझाना क्या चीज है
0: जी जी जी ता कितनी की गर्मी जड़े से है आज
1: गर्मी तो बड़ी भारी है
0: गर्मी बड़ी ज्यादा है ना जी
1: बाहर तो थोड़ी नहीं हो रहा
0: जी जी गर्मी च अपना जेड़ा ख्याल है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी ना जी
1: हां जी
0: जी ता अंबा दा नोआ लगाई लिया तो हां कि नहीं लगाया अल्ले
1: बस बाजार जो खरीद कर खा ले मैं तो बड़े तो बाकी बात निके निके ने चीचे बनाने वाले इसी ने
0: जी चीचे बनाने वाले ओई पियो ना जी
1: हां जी खाना है मतलब चीचा जी
0: जी बड़ा टेस्टी होता ना जी चीचा
1: हां जी हां जी
0: जी जी
1: और रात की नींद बड़ी भारी होती है आज सुबह तक नहीं आया
0: जी वैसे भी जेड़ा हंदे माता पिता है ना या बुजुर्ग हैं से यही बोल दे कि ज्यादा जेड़े से आम मत खा इतना तुम्हारा प्यागा नहीं उठी पाना है ना जी
1: हाँ जी पंजाब की चोरी ना उनको बोलते खड़ा है ना कि क्या खा दोगे खाई दिया
0: जी जी जी परमेश जी आज तुम्हारा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: अभी गाना सुनाएंगे तेरे जो बांध के फैला पाल जो देव बाद देव मारिया
0: जी जरूर ये फरमाइश तो हम तक पहुंचा दें जी जुड़ने वाले बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हम दा अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ करने जुड़ चुके हैं न कर दें तीन करने गल बात हेलो
2: नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तो हम दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न जी तो हाँ कुछ ते बोला दे करने तो हम दा ना क्या है जी
2: मैसेज वाली से बोले मैडम जी अशोक कुमार ना
0: जी अशोक जी क्या काम कार लग गया तो हाँ क्या करा दे
2: मैं मिस्त्री काम कर रहा था
0: जी ता आज काम कुछ लग गया तो हाँ
2: जी
0: काम जड़े से कुछ लग गया तो हाँ
2: अच्छा बागनी रहे काम
0: जी अच्छा बागनी चीज जड़े से काम लग गया तो हाँ जी और नई ताजी सिद्ध बाड़ी दी
2: काम भी नहीं आता है तो इतनी गर्मी बड़ी है
0: जी गर्मी ता बड़ी ज्यादा है ना जी
2: हां जी
0: जी गर्मी करने अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखना है क्योंकि गर्मी का मौसम अहाँ जड़े से सहन नहीं करी पाते, कने समय समय अनुसार जड़े से पानी पीना भी यहाँ वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है ना जी। क्योंकि कई बार होंगे ना कि यहाँ ये सोचते कि काम पहा यहाँ का सारा ध्यान होंगे, कने अपनी जड़ा सेहत है उस जो हाँ कुछ ना कुछ नज़रअंदाज जड़े से ज़रूर कर दे जी। तो आज जी आज कुंडिया गीत सुनना है जी तो हाँ
2: मेरी जिंदगी जिंदगी सुखी रानी है
0: जी। कुंडिया
2: मेरी जिंदगी फकीरानी
0: जी। अच्छा मेरी जिंदगी फकीरान दी
2: पम्मी ठाकुर ला
0: जी। जी जरूर ये फरमाइश तो तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हों दा।
2: धन्यवाद जी। धन्यवाद
0: जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਦੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਜੁੜਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤ ਹਨ, ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤ ਹਨ, ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸੈ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੋਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਹੈ 7018117091। ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ, ਕਨੇ ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ।

0: माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे ही सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश ए फरमाइश हाँ जो आई हुए तंगलोटिया ते कन्ने तिना दा ना वे रमेश जी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कन्ने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया आज के दिने दी अहां खास जेड़ा गल करिए हर दिन अहां वास्ते खास होंदा पर कुछ दिन अहां वास्ते ज़्यादा खास होंदे पर अहां जो हर दिन जो खास बनाने वास्ते अपनी जेड़ा सेहत है ना सेहत दा जेड़ा ख्याल है से रखना जरूरी है तो आज अहां जेड़ा स्पेशल दिन बना देना से बना देना कि जितने भी बुजुर्ग हैं तिना दा जेड़ा फिटनेस है से अहां वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है तिना दा ख्याल रखना अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है ये ऊपर अहां गलबात करनी है पर अगले जेड़ा श्रोता न पहले तिना कन्ने कर देना गलबात। हेलो
1: हेलो नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद मैडम जी, ठीक ठाक। मैडम जी तुहां सुना
0: जी? यहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
1: ईशा बोल रही मैडम जी।
0: जी ईशा जी रक्कड़ ते।
1: हां जी
0: जी, क्या हाल चाल है रक्कड़ आयां दे?
1: बढ़िया मैडम जी।
0: क्या इस टाइम तो हाँ काम कार करा दे?
1: बस मैडम जी ड्यूटी दे के आए ना।
0: जी अच्छा, ड्यूटी दे आए उन घरे दी ड्यूटी जेड़ा ऐसे शुरू हुई है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो ईशा जी अहाँ आज जेड़ा खास दिन बना देना से बना देना कि बुजुर्गों का जेड़ा स्वास्थ्य है या तिना दी फिटनेस है अहाँ किस प्रकार जेड़ा ऐसे तिना दा ध्यान रखी सकते?
1: अच्छा खाना देना मैडम जी, तिना सेवा करनी।
0: जी
1: जी
0: जी, सेवा दी तुहां गल कीती ना जी। कई बार होंदा ना कि बुजुर्ग जेड़े से ज्यादातर अपना ख्याल नहीं रखदे, मतलब उन्हें जो अपने स्वास्थ्य की कोई फिकर नहीं होंदी ना जी।
1: हां जी, मना करना या नहीं खाना वो नहीं खाना तो नाराज हो जांदे
0: जी, फिर भी यही बोल दे कि नहीं यहाँ ये चीज खानी है, यहाँ जो कुछ नहीं होंदा
1: नाराज हो जांदे
0: जी। जी तो थोड़ा दिया
1: तो आप खाना नहीं देंदे समझो।
0: जी जी
1: जी,
0: कने बच्चे अगर जरा करी बारा दा खाना या कुछ उल्टा सीधा खाई लैंदे न ता बुजुर्ग जेड़ा से बच्चे जो डांट दे न
1: जी,
0: पर उन्हें जो भी जेड़े से गल सुनना चाहिए अपने स्वास्थ्य दा जेड़ा ख्याल है से रखना चाहिए ना जी।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि स्वास्थ्य जेड़े से अहां वास्ते एक वरदान है ना जी। अगर अहां दा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
1: हाँ जी, तिना बोला मत खाते बोलते पता नहीं कितनी के जिंदगी खाना दिया
0: जी जी हर हर बुजुर्ग का यही सवाल होंदा ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, चलो जिंदगी दा तो सभी सही बोल दे कि जिंदगी दा तो कोई भरोसा नहीं है ना जी।
1: नहीं मैडम जी, कोई भरोसा नहीं आजकल तो, बिल्कुल भरोसा नहीं
0: जी। बिल्कुल जी, कई बार हाँ अपने आसपास भी दिख दे ना कि कोई अगला जिड़ा व्यक्ति है से बिल्कुल ठीक है, कने अचानक कुछ हो जाता है तो हाँ भी सोच विचार करने पर शुरू हो जाते ना कि नहीं जिंदगी दा तो कोई भरोसा नहीं है ना जी। कने जेड़ा अहां पल है या जेड़ा समय अहां ले उस जो अच्छे ने खुशियां ने बिता।
1: हां जी, ये अचानक कोई गल हुई है तो अगला दिन उन तो डर लगदा हूं पता नहीं क्या सुनना है।
0: जी जी
1: हां जी,
0: ईशा जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
1: गाना सुनाई नहीं मैडम जी, जिंदगी सोहनी है शिकवे की करी।
0: जी जिंदगी तो सोहनी है पर टेंशन जेड़ा है उन्हें जो बिल्कुल बाय बाय बोलना है ना जी।
1: हां जी गाना सुनाना जी।
0: जी जरूर, तो हमारी फरमाइश तो हां तक पहुंचा दें जी।
1: शिकवे की करिए। हां जी आ गाना सुनाई।
0: जी जरूर जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: जी। मुझे भी गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता
0: जी। चलो अच्छी गल है जी, थोड़ा मन भी हल्का हो जांदा कने अपना जेड़ा दिल है से भी लगया रहंदा ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी, धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: अगले जेड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक है। तुहां बोला
0: जी? यहां ता बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
2: अच्छा
0: जी, क्या हाल चाल है तुहांदे ग्रां दे शहर दे तुहांदे?
2: साढ़े ग्रां दे मैडम जी हाल बढ़िया है ना
0: जी। ता अपना ग्रां भी दसी दिया कने अपना नाम भी जरूर दसी दिया?
2: ना मेरा माया देवी के ना ग्रां साला चिंदू खन्यारा।
0: जी माया देवी खन्यारा ते बोला दे?
2: हां जी टिल्लू खन्यारा ते।
0: जी टिल्लू खन्यारा।
2: हां जी
0: जी ता आ जो हुन नाय दा पता चली है ग्रां दा पता चली है ता हुन खन्यारे वाले जेड़ा से बिल्कुल ठीक है ना जी?
2: ठीक बढ़िया मैडम जी बढ़िया ठीक
0: जी। ठीक ही चाहिए ना जी?
2: जी
0: और नोई ताजी उस साइड गर्मी है कि वैसे तो बोल दे कि ठंड ही है खन्यारे
2: पर थोड़ी धुप्पा पर बोल दे गर्मी ज्यादा ना।
0: जी जी
2: धुप्पा पर के ना ये तो सिंह ज्यादा ठीक ही होता मौसम होंगे ना जी। धूप जो बोल दी ता लग दी ठंडी
0: जी। वैसे भी गर्मी जिड़े से मौसम अपना बदलाव कुथी ना कुथी लै दा ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: कने हाँ अपने आसपास जंगलां जो भी दिख दे ना तो तिथु भी आग वगैरह जिड़े से लगाई दे दे या क्या
2: कर दे ना बड़ी गाल से
0: जी। तो दीदी आवाजा ने भी थोड़ा हवा जिड़े से गरम कने क्योंकि उन जंगला चाहा आग लगानी तो कुथी ना कुथी यहां दा जेडी हवा है सब यहां जो शुद्ध नहीं मिलनी ना जी।
2: जी जी जी
0: जी
2: पहले तो गर्मी नहीं होंगी थी साढ़े खनियारे के तो हम ज्यादा हो रही बड़ी
0: जी। अच्छा पहले जेड़े से गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी ना जी?
2: नहीं थी नहीं थी
0: जी। कने उने दी गाल कर ना कुथी मौसम जेड़े से बिल्कुल बदली आ।
2: हां जी
0: जी ता माया जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
2: गाना सुनना रंग बिरंगा जहाज बनाया उड़ने भी करो तैयारी जी।
0: जी रंग बिरंगा जहाज बनाया
2: उगड़े भी करो तैयारी अगली सीता बाबा जी रखे पिछली संगत सारी।
0: जी जी जरूर ये भजन तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम
0: जी। ताइशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाना है पर जेड़ा गल बात है से जरूर तुहां तक पहुंचानी है। बुजुर्गों का जिहड़ा ख्याल है फिटनेस का महत्व तिना दा स्वास्थ्य का जिहड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत होंदी। नियमित जिहड़ा व्यायाम करना भी हां वास्ते जरूरी है कने जिहड़ा हां दा खान पान है सभी सही होना जरूरी है। तो चलते न सुनते न अगली फरमाइश तुहां तक पहुँचाते न तुहां सारे भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा कने मेरी गल बात जो भी जरूर इंजॉय करा।

सरस्वतों तो सारे सुनिया ये भजन। इस भजन की फरमाइश शाह जो आई हुए सिद्धबाड़ी ते कने तिना दा नाम है अशोक जी। अशोक जी तक अहाँ एक गीत पहुँचाया, ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। कने फिर इतहाँ वापिस जिड़न से अपनी गलबात उपर आई आते हैं। बुजुर्गों का जिड़ा स्वास्थ्य का ख्याल है से अज ही जिड़ा हाँ स्पेशल दिन नहीं बनाना है, हर दिन जिड़ा से ख्याल रखना है, चाहे से खान पान दे, चाहे कोई भी यहाँ काम कर दे ना काम। कई बार अहाँ काम करने दे चक्कर च अपने स्वास्थ्य का जिड़ा ख्याल है से रखना भूली आते हैं। तो समय के अनुसार जिड़ा अगर तुह जो लगता है कि कोई भी बीमारी है या बीमार हैं तो जरूर जिड़ा डॉक्टर है इसकी सलाह लेनी है, दवा लेनी है समय के अनुसार। समय के अनुसार अहाँ अपने स्वास्थ्य जो दसते हैं अपना जिड़ा ख्याल है से रखते हैं तो जिंदगी का जिड़ा सफ़र है से बिल्कुल सुहाना जिड़ा से लगता है। जिड़ा सैर है अहाँ जो प्रतिदिन जिड़ा से सैर करना भी अहाँ वास्ते जरूरी है, कने थोड़ा स्वास्थ्य जिड़ा से अहाँ दा बेहतर रहता है। व्यायाम करने दे भी बड़े सारे जिड़ा फायदे न, जिड़ा अहाँ दा स्वास्थ्य है सभी ठीक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य की गल करिए या शारीरिक स्वास्थ्य की गल करिए, तुम थोड़ा दया क्या बढ़ते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न। सुनते नि सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: जी तो हक तू ते बोला दे कने तो हंदा ना के जी
1: रक्कड़ ते बोला दे जमुना देवी
0: जी रक्कड़ ते जमुना देवी
1: जी
0: जी जमुना जी क्या काम काल लगाया तो हाँ क्या करा दे
1: क्या करना मैं
0: जी
1: बैठी हो घर
0: जी कोई काम कार नहीं है
1: ना
0: जी। तो आज तो हाँ गुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: घूमने वाली माता दा भजन
0: जी गुणे वाली माता दा भजन सुनना है तो हाँ जी जरूर से भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओ तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने कन्ने कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तो हाँ तक बिल्कुल लाइव चलिया कन्ने समय भी अपना जिहड़ा रफ्तार लेकर चलिया है तहाँ भी समय दे अनुसार चलना है कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है। सुन दे अगली फरमाइशा तुह सारे भी इंजॉय करा।

तो श्रोताओ तो सारे सुनिया ये प्यारा दया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन की फरमाइश अहां जो आई वे खन्यारा ते कने तिना दा ना वे माया जी। माया जी तक अहां ये गीत पहुँचाया कने तुहां सारिया भी ये भजन इंजॉय किया। तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने हम सफर जड़े से जरूर बनी सकते। इस कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। इसी कन्ने अहां जिहड़ा अज ने दिने की गलबात करा देन से करा देन कि किस प्रकार अहां जिहड़ा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं जिहड़ा फिटनेस अहां दे जिहड़ा बजुर्ग हन तिना दी फिटनेस का ख्याल जिहड़ा है से किस प्रकार रखी सकते। मौसम के अनुसार बजुर्गों का जिहड़ा ख्याल है से रखना ज़्यादा जरूरी है कने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। कई बार होता ना कि बुजुर्ग जिहड़ा ना ज़्यादातर अपना काम कार करते रहते कने अपनी सेहत जो कुथी ना कुथी नज़रअंदाज जिहड़े से जरूर करते न। तो अपनी सेहत जो जिहड़े से तो नज़रअंदाज नहीं करने, सेहत है तो सब कुछ है, बाकी काम भी सेहत कने ही जुड़े न। अगर अहां दी सेहत ठीक है तो अहां हर काम करी सकते, चाहे से कोई भी काम है, घरे दे काम मन या बारह दे काम मन से अहां करी सकते। कने अगर अहां दी सेहत ही ठीक नहीं है तो अहां कोई भी काम जिहड़े से अच्छे ने नहीं करी पाते। तो ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखा कने अपना कने अपने दा जिहड़ा ख्याल है सभी रखना तुहांदा ही काम है, क्योंकि बुजुर्ग चालू अपना ख्याल रखते न ताई बच्चों का जिहड़ा ख्याल है से रखी पाते न। घरे दे बुजुर्ग जिहड़ा न से अहां ये बोली सकते कि एक रीढ़ की हड्डी होंगी। तो इसी कन्ने तुहां अपना भी ख्याल रखना है कने अपने परिवार का भी जिहड़ा ख्याल है से तुहां रखना है कने अहां भी तुहांदा जिहड़ा ख्याल है से समय समय अनुसार रखते न, चलते न, सुनते न। इसा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइश अहां तक पहुंची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नाम है पवना जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते। तो सारे ही इंजॉय करा।

पर यह है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो समय भी जरूर आहां जो बार बार ध्यान जिहड़ा है से दिला दा कि हुण कार्यक्रम च समय जिहड़ा है से समाप्ति दी ओर चली पे है। समय जिहड़ा से यहाँ सिर्फ कुछ सैकेंडा जिहड़ा से रह गया न, तो जरूर तुहां अपना जिहड़ा ख्याल है सभी रखना है कने जिंदगी दा जिहड़ा सफर है उस जो बेहतर तरीके ने जीना है। जीना तुहांदा काम है। अगर अज कने दिने दे बारे च सोची करी अहां जींदे न तां बड़ी अच्छी गल है, कने कल्ले दे बारे च सोचदे न तां कल कुनी दिखिया। तां अपना जिहड़ा ख्याल है सभी रखा कने अपनियां दा ख्याल जरूर जरूर जिहड़ा है से रखा कने अपनियां जो समय जिहड़ा है सभी जरूर दिया। समय दी जिहड़ा कीमत है सियाहां दी जिंदगी च बड़ी ज़्यादा है। समय दे अनुसार अगर अहां सारे काम करदे न तो सारे काम अच्छे लगदे न। तो इसी कन्नै अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर

0: नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ तुझे वो गीत अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हाजिर बुझको बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक है, अभिनंदन है सभी हुंडियाले रहा सभी श्रोतागण रहे। क्या हालचाल है श्रोतो तुंदे? उम्मीद करनो तुंदे हालचाल बिल्कुल ठीक भुने तो सब खरे भुने न और खुश भुने न तंदुरुस्त भुने ही न। कार्यक्रम मंच बहुत सारी जानकारी के अनुसु तुसोगे शेयर करनी ने साझा करनी न और इस कार्यक्रम मंच अपने गाते कार्यक्रम मंच तो सब जुड़ी सकते हैं श्रोताओं जी रोज़ाना जुड़ते हैं 7018887091 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिर तू हो गया हूँ शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7018887091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल आइए श्रोताओं कार्यक्रम जो होगा बढ़ दिन और इन पहले श्रोता हसूगे कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बोल दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: और ठीक ठाक ने सर जी?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ला तो है ठीक ठाक राजी बाजी
1: जी? ठीक ठाक ने सर जी।
0: और करे लगुरिन कदे या
1: घर में सर जी बैठ के सर जी तो हम दी प्रोग्राम सुना दे कने धूप भी गयो।
0: हाँ जी
1: हाँ जी सर जी।
0: धुप तो बड़ी ज्यादा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: आज तो इड़ी धर्मशाला ही बड़ा बुरा हाल है मतलब बड़ी ज्यादा धूप की है।
1: चलो रीत है ना सर जी गर्मी है दिने गर्मी भी होना चाहिए बरसात की टाइम बरसात भी होना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: रीत था ये तो कोई डाउट नहीं।
1: हाँ जी।
0: और किधर गो आज का दिन तुंदा
1: जो भी सर जी प्रभु दे दिया ते निकलेंगे सोच दी ना पना सर जी।
0: हाँ ये था बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: नोएता जी
1: सब बढ़िया सर जी। नोएता जी है बढ़िया इलेक्शन हुई है सर जी।
0: अच्छा कुछ नोएता जी ने?
1: हाँ जी नहीं सर।
0: चलिए जी तद सकुंदे ने गीत सुनना चाहते हैं तो है
1: सुनील राणा दी आवाज़ सुनाई ने गाना है काछा चढ़िया पहाड़ा जो काछनुमा।
0: अच्छा काछा चढ़िया पहाड़ा जो काछा लो।
1: हाँ जी सर जी।
0: ठीक है जी। गद्दी गाने बड़ा होने दें तो है तुंदे आस पास मतलब गद्दे वंदे हैं?
1: नहीं नहीं सर जी तो नहीं गद्दी।
0: अच्छा फिर की करे तुंदा बनुआ
1: सर जी या धान बकरियां लेके आंदे हैं ना जी है गद्दी भाई?
0: हाँ जी
1: ते तीन जी थोड़ी बहुत बोली सीखी वाली जो मेरे दादा दी भी थोड़ी मित्र यार ने सर जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी। पर बहुत मिठी मतलब ये होंगी मतलब भाषा गद्दी।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: चले ठीक है जी जरूर तो सुखी थोड़ा ले।
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी। नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा कहना सो तो है सभी ट्यून कर रही और हूँ कर देना ता दत्ता है टीके चतैर माँ के सो बरहाल इंदे अगले श्रोता सुग कनेक्ट हो जाए आऊँ दसना चाहूँ दो दत्ता की सो टीका चतैर माँ भी किया सो इलेक्शन हिन श्रोतों इंदे अपने घर अंदर इलेक्शन हिन स्लेड गोदाम टीका चतैर माँ है ना। तो चलिए जी आऊँ सभी जो सिर्फ ये बोलना चाहूँ कि तो है अपना मनो मतलब आऊँ ये मैं सोचते कि हाँ इंदा मनो कि इंदे ग्रां रहा जड़ी तुसु लगता कि मनो ये प्रधान उप प्रधान पंच है ना जिला परिषद जड़ी तुसु लगता कि कैपेबल हिन ये कर सकते हिन हगों पाँच साल इंदे इंदे ग्रां जो किया सो सशक्त बनाई सकते ने इंदे ग्रां मंच किया सो प्रोग्राम अवेयरनेस कार्यक्रम किया सो ले करे इजी सकते हिन इस प्रकार बनी सकते हिन ता तो है जरूर किया सो तिन्यों वोट करना ना जो अवेयरनेस वे फैलान जो ग्रां जो किया सो आगू भी बढ़ान ग्रां अंदर किया सो कामकार भी बोल सब चीज़ें बोल। बहरहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़ दिन श्रोता और आगाज कर दिन पहले कार्यक्रम का आगाज माफ कर आगाज ना पहले इंदे श्रोता असुगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो
2: हेलो। नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक ना?
2: ठीक ठाक जी ठीक ठाक।
0: और कर लगरन अच्छा। और नोयता जी के आज कने कदे कदे गो तुंदा स्कूल तुंदा दिन
2: चलो खरा निकली गो बदी जगह दिन निकलो सो या पना सचन जी।
0: हां बिल्कुल जी बिल्कुल
2: हां जी। जत्ते बोट चले आए
0: दत्ते बोट चले आए जी
2: है ना।
0: हां जी हां जी
2: पता सचन जी पता क्या बंदा
0: जी
2: काम खरा करने ना जी मतलब।
0: हां जी
2: बहुत तमंग मेरे को जरूर से ना बंदे
0: ए ता जी
2: है ना ये पता के बंदा काम करंदा आ करा है।
0: हां जी
2: तब बहुत तमंग कोई जरूरत बना तक बराने कोई जरूरत ने पता बंदा बन गए
0: जी जी जी बिल्कुल।
2: अरे तो कई ये ना से लगा कब की डर लगी थी वो आया है कब की मांगा ना करी पूरी तक जी ना करी
0: जी
2: है ना।
0: हां जी
2: चलो बेटे करना थे।
0: हाँ क्या बोले सकते हैं ना जी। चलिए जी वोट पाना जरूर गाना और वोट तो सुए ना कि तुंदे नजरिए में तुंदे नजरिए में तुंदे नजर में कि असो कुन मतलब प्रधान उप प्रधान कुन गैंडा है ना जी।
2: नौ बंदे का मौका देना चाहिए सचिन जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल नौ बंदे का मौका देना चाहिए। चलिए जी जल्दी
2: 5 साल बाद जिंदे रहे था जा चंदे ना।
0: बिल्कुल 5 साल बाद क्या
2: पहले तो जवाब दी देना ना।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
2: पहले तो बल्ली देना
0: ए था जी। चलिए जी
2: चलो
0: ठीक है जी। कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
2: बेटा तो तेरी यहाँ पाल लो ना तू घर आ जाएंगे
0: ठीक है जी। जरूर सुन ले तो सुगी
2: ओके ओके।
0: तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ट्यून कर रहा। और आइए जी आगाज कर दिन कार्यक्रम रे इस गीत सोगे और फिर तथों बाद तुंदी सबेरी फरमाइश पूरी कर ले अन्य जानकारी तो सो गया है जरूर शेयर कर ले साझा कर ले। मने रे आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ट्यून कर रो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी का पगन सो चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुके फिर सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा तो श्रोतो कॉल करी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत हुनने वास्ते 7018887098 पर बरहार इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड इन और श्रोतो हिमाचल में भी किया सो भीषण गर्मी इस समय किया सो प्यो कर दिया और छिया जिला में किया सो लू चालू कर दिया श्रोतो शिमला में भी किया लोग बेहाल न और आठ जिला में किया सो हीट वेव रा अलर्ट हा श्रोतो 28 मई तक राहत रह आसार लागू कर दे हिन पर बुने ने हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाके में मंगलवार छो भी गर्मी थो बेहाल नजर आए मनो ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सोलन और सिरमौर जिला में निचले इलाके में मनु जो लू रा सामना किया सो करना पे प्रदेश औसतन अधिकतम तापमान सामान्य थो 8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। सो तो हिल स्टेशन शिमला रा अधिकतम तापमान सामान्य थो 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहे हुआ सो तो जबकि मनाली में सामान्य थो 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ है। सो तो शिमला में गर्मी थो मनु के अंसो बेहाल नजर आए इन वे जो स्थानीय मनु और टूरिस्ट छतरी लेकर किया सो अपना मुंह ढक्कू कर दे हिन छतो मुंह ढकने जो किया सो मजबूर भुए हिन। बहरहाल अगली जानकारी भी तू होगी साझा कर ले लेकिन इन दे श्रोता सुगी कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी। नमस्कार पुरुषोत्तम कुमार जी, क्या हाल चाल तुंदे और क्या हाल चाल भद्रा वाले रे? करे करे लगुरेन
1: आज जरा गर्मी
0: करे करे लगुरेन जी क्या नोई ताजे क्या नोई ताजे जी दुप लग रहे जी
1: दुप लग रहे थे
0: अच्छा इंदे भी दुप लग रहे जी इंदे इस कनारी भी दुप लग रहे हाँ जी दुप लग रहे जी कुंडे ने की हाँ जी कुंडे ने की थोड़ा ना हाँ जी आवाज ना चुन दी तुम दीजिए क्लियर ना
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो
0: हाँ जी हाँ जी कुंदे ना की थोड़ा
1: ये सुना दोबन पानी एक के चलिए मैं तेरी सुनो
0: अच्छा दोबन चलिए ठीक है जी
1: लगी थी भाई
0: बिल्कुल होना ले जी
1: कहीं दे दोस्त ने पंचग्राम पुष्करनाथ शिवालोहट गोल्डी राकेश कुमार अब्दुल लतीफा आशिक हुसैना शेख जफर हसन तो उस्मान अली अंसारी ये सभी जो गीत डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: सा चलिए ठीक है जी तीन सभी जो भी गीत है डेडिकेट करो दा बड़ा धन्यवाद और तुम दा गीत है जरूर होना ले नमस्कार
1: धन्यवाद नमस्कार।
0: शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही हैं। चलिए चल देन और काचा चढ़िया पुहाड़ा जो गीत हुन देन

0: श्रोता एफएम 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के नए सो चल रही हैं ता इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता जरूर जुड़ी सकते हैं इन अगले श्रोता री कॉल के सोच होगी कनेक्ट वो चुकर दे हा। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: क्या हाल चाल? ठीक ठाक ने? बढ़िया जी बढ़िया। जी कुट बलून देन और कड़ी थम बलून देन? अच्छा अच्छा जी कुंडन की थोड़ना तुसु?
1: गोरा प्यारी लाडली।
0: गोरा प्यारी अच्छा लाडली की थी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है जी जरूर सुना ले। नमस्ते। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में दौड़ते ही रहना जानकारी का दौड़ना बदली नहीं आला ये लाडली गीता रही की सो फरमाइश आया तो यह फरमाइश जो है ज़रूर पूरी कर ले। बहरहाल श्रोताओं बाकी में गर्मी ना है पूरे हिमाचल में भीषण गर्मी पे कर दे रहे इस समय की 28 डिग्री के आसपास धर्मशाला मौसम की ऐसा बन रहा है श्रोताओं और नमी की गल करूँ तो 17% मात्र नमी किया सो इस समय बन रहे हैं तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बेहद ज़्यादा किया सो गर्मी इस समय श्रोताओं और इस चीज़ों की श्रोताओं पंचायत चुनाव रहे पहले चरण में किया सो 78% मतदान हुआ है। लोकतंत्र रहे महापर्व में जनता है बड़ी चढ़ी कर किया सो भाग लियो हुआ और कुल्लू में सबसे अधिक लाहौल में सबसे कम वोटिंग किया सुबह या श्रोताओं कितनी कितनी कड़ी कड़ी वोटिंग हुई हूँ जिला में गल करूँ श्रोताओं का कुल्लू में 84.34% वोटिंग हुआ मतदान हुआ सिरमौर में 83.41% सोलन में 80.6% चंबा में 80.70% शिमला में 82% 80.25% मंडी में 78.65% ऊना में 78.25% अभिलासपुर में 77.40% और कांगड़ा की गल करूँ तो कांगड़ा में भी 75.75% की सो हुआ श्रोता वोटिंग तो लोकतंत्र रहे महापर्व में जनता है बड़ी चढ़ी करेगी सो भाग लियो और हमें भी चाहता कि लोकतंत्र इस महापर्व में किया सो तो सब भी बड़ी चढ़ी करेगी सो भाग लेन वोटिंग जरूर करना और अपना मनो किया सो जरूर छोड़ना अपना हेरने हुनने वाला और अपनी पंचायत जो जो हगों लेकर के छा तसी पर ठप्पा जरूर लाना।

धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती हैं। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।

0: श्रोतो अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। जी बिल्कुल श्रोतो, तो सब गिजी सकते हैं, तो सब के 128 थो लेकर 30 तरीका तक पुलिस ग्राउंड के सो गिज सकते हैं और तरीके सो जो इंदे तिप्तियन हिन इन्या बड़ा अच्छा किया सो त्राई दिन रहे प्रोग्राम रख रहा ऑर्गेनाइज करवाओ कर दे हिन तो सब जरूर गिर सकते हिन और आनंद ले सकते हिन श्रोतों कार्यक्रम रगिचे करे। तो बहरहाल तो सब उन्होंने समय सचिन कपूर सो के एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम जो है बड़न दिन हूँ और इंदे श्रोता सूखे कनेक्टेड थी अक तो अभी कनेक्ट हो सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते 7081809 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ आतू के शेयर करनो 7081811709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इंदे श्रोतागण असूगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, कौन बोल रहे और खड़ी थम बोल रहे? अकुल जी पहले तो अपनी भाषा गल करा अगर तो है कर सकते हैं तो है ना?
1: आती नहीं है तो
0: नहीं तो ता फिर यह है ना गल कर सकते तुसु होगे ना जी कजो के अच्छा। अगर अगर तुसु अपनी भाषा नहीं दे और अपना एक कार्यक्रम ठेरा मेन जो थीम है सो ये है कि यह अपनी रूट्स जो ना बोलना अपनी जड़ा होगी कि सो जुड़े रहन है ना अपनी बोली होगी जुड़े रहन। ता पहले मुझे लगता कि तुसु अपनी भाषा सीखना पैने तथा बाद इस कार्यक्रम में तो है कनेक्ट आप बुझे सकते हैं है ना जी?
1: ठीक है जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद। है कार्य चलिए सो तुम कार्यक्रम जो है थोड़ा करिए और हगूँ की ऐसा बढ़न दे हिन और मेरी गुजारिश है सब भी था और बड़े तहे दिल था गुजारिश करूँ करता है कि हिंदी है वो सब भी हिंदी है मोस्टली इंग्लिश भी असू सब भी होते बुने है ना थोड़ी मती तो सब बल्ले लेंदे बुने ने अपनी भाषा मंज गल करा अपनी यह गद्दी बोली माँ के असो कना है ना अगर तुस अगर दिन दे ताए तो है इस कार्यक्रम माँ के असो जुड़ी सकते हैं इस कार्यक्रम माँ के असो इस कार्यक्रम हो गए तो है लगाव ताए रखी सकते जुड़ी ताए सकते ने कि जहाँ तो है अपनी बोली होगी जुड़ रहे बुन अपनी रूट्स होगी कि असो जुड़ रहे बोले। बहरहाल तो कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़ेंदे ना है श्रोतों और कम हाजिरी वाले छात्र छात्र के ना तिया पे परीक्षा की असो ना दे सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय वे फैसला हा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक। देश अदालत में श्रोताओं पढ़ाई करने वाले छात्रों री अटेंडेंस जो लेकर कि असो बेहद महत्वपूर्ण फैसला के असो होना हुआ सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट रहे उस पिछले साल रहे आदेश पर रोक लाई दी जति में ये बल्लो थो कि कम अटेंडेंस रहे आधार पर कि असो कानून रहे छात्र जो परीक्षा में बैठने मंज के असो रोक हा। कोर्ट रहे बलना हा कि इस तरह कॉलेज रहा अनुशासन बिगड़ता हा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता अरे खंडपीठ है श्रोतों ये फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा की ऐसो दायर एक याचिका पर सुनाई देता है। ऐसा याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट रहे उन निर्देशक जो चुनौती देते हैं जिन्हें में लो स्टूडेंट्स रहे वास्ते किया अटेंडेंस अनिवार्य है। अगर लो स्टूडेंट किया तिन्या वास्ते अटेंडेंस अनिवार्य है जो कि रूल रेगुलेशन था जरूरी है श्रोतों अगर तो है ला रही पढ़ाई करो कर दिन था मोस्ट इंपॉर्टेंट रख दें। बहरहाल तो सब बन रहे ने समय सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो हूँ कर दिन आइए चल दिन आगू और कार्यक्रम में लेके चलते तू सब भी जो इस गीतारी किनारे बने रे आरजे सचिन कपूर सो के

जाना कि मतलब हिमाचली गीता में जो हिमाचली फोक में तो जो सब भी वो ज़्यादा पसंद किया कुंडन गीता था उस गीता रन आखिया सो जरूर लियो धोबन पानी धोबन गीता रन आखिया सो जरूर लियो धोबन पानी ये जो चली है। वाकई में ये जो ये लिरिक्स ने और वर्षा कटोच जी जस अंदाज था गोरा वाकई में बाकमाल अशत और लिरिक्स में बाकमाल और इस गीता में जो स्टोरी आ सो अपने आप में बड़ा कुछ दर्शाऊ कर दे अशतों बड़ा कुछ दस्तु कर दे ये वाकई में कमाल आ। बहरहाल तो ये सब हूँ कर देने इस समय कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा और कार्यक्रम में जो श्रोतो अब अगली फरमाइश भी आ लाड लिए गीता री फरमाइश है ना जी जो कि कमल नहरी द्वारा गौ रहा था। चलिए इस गीता जो भी होनी लंदन वक्ता वक्ता का जो कि समय रहा थोड़ा करे अभाव आ फिर तथों बाद गंदे गंदे कुछ एक जानकारी तुसु के साझा जरूर कर ले।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया ना सो चल रही श्रोताओं ता ऑलमोस्ट सभी दी फरमाइश आके ना सो है पूरी करी दी तीन है ना श्रोताओं लेकिन कसकरी हाँ मैं भी कसरी भी किया सोना रही उड़ी फरमाइश सब मेरी पूरी भून छो तो सब भूण कर देने सब एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर रहा तुसु सोगे ता फिलहाल ता शो तो सब भी थो इजाजत ले लेनो और गंदे गंदे सिर्फ तू सब भी यही बोलना चाहनो शो तो कि बाबा अपनी सेवा ज़रूर करा है ना मुट्टे भी मुट्टे रही इज्जत की ऐसा ज़रूर करा और अकीद वो हो कि प्यार प्रेम की ऐसा ज़रूर रखा श्रोतो उनका जो कि वक्त रहा कोई भरोसा न बुंदा है ना कहने क्या बच गया अच्छा सो अकीद वो हो कि परिवार में किया सो प्यार प्रेम ज़रूर रखा नफरत किया सो मतलब कभी भी किया सो सिर्फ रिश्ते रहा अंत कर दे नफरत छो तो प्यार किया सो रिश्ते जो खूबसूरत बनंदा है बेहतरीन बनंदा है और इसी सो किया हूँ अपने ही ग्रां रहे टीका चते स्लेड़ गोदाम रहे सभी बाशिंदे जो ही बोलना चाहता है कि तुहे ज़रूर किसी गरीब होते वोट करन और वोट करन अपने अच्छे ग्रां रहे भविष्य वास्ते इन्या शब्द था सचिन कपूर ले लेने तो सुथों अब इजाज़त नमस्ते धर्मशाला।

0: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।

0: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
1: सुनो एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
2: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

में है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्म शाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। कार्यक्रम में श्रोताओं सबसे पहले आइए जानते हैं इस वक्त का धर्मशाला का तापमान। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है इस समय 46%। जी हाँ श्रोताओं, तापमान 21 डिग्री है और तापमान जब बारिश हो रही है तो गिर रहा है और जब बारिश नहीं हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है तापमान का बढ़ना भी जायज़ है। और गर्मियों के दिन है, उमस है, गर्मी है, ऐसे में खूब सारा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ख़ासकर हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घर परिवार के, उन्हें भी समय समय पर पानी पिलाते रहें, क्योंकि पानी की कमी से हमारे शरीर में कई सारी छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो घर कर जाती हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में तो ख़ासकर हमें पानी का ख़ास ख्याल रखना है, खूब सारा पानी पीना है और बच्चों को भी पिलाएं और घर के बड़े बुज़ुर्गों को भी सलाह दें कि समय समय पर पानी पीते रहें। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत भी होगी और जानकारियां भी साझा करेंगे, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इन दिल की बातों से। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। पैरों से कांटा निकलने के बाद चलने में जो सुकून मिलता है, वही सुकून मन से अहंकार निकालने के बाद जीवन जीने में मिलता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे नफरत या झगड़ों में बर्बाद ना करें। जी हाँ श्रोताओ, जब हमारे पाँव में कांटा लगता है और उस कांटे के दर्द से जो हमें चलने में तकलीफ होती है, उस समय हम यही सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये कांटा हमारे पाँव से निकल जाए और हम ठीक ठाक होकर के उसी तरह से जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलें। और ऐसा होता भी है कि हमारे पाँव का वो कांटा जब निकलता है तो हमें वही राहत, वही सुकून और चैन मिलता है और चलने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वही कांटा हमारे मन के अहंकार को इस आज के विचार में जो है हम कह सकते हैं कि उसका कंपैरिजन किया गया है कांटे का और हमारे अहंकार के साथ, कि जिस तरह से कांटा लगने के बाद जो है हम चल नहीं पाते ठीक से, उसी तरह से मन में अहंकार आ जाने के बाद भी हम जो है वो अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाते, अच्छे से व्यवहार जो है वो नहीं कर पाते। और जिस समय हमारे मन से ये अहंकार रूपी कांटा निकल जाता है, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लगती है। इसलिए नफ़रत और झगड़ों में ज़िंदगी और समय बर्बाद ना करें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे नफ़रत मिटा करके, प्यार करके, मिलजुल करके सबके साथ व्यतीत करें। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला के गेटी थिएटर में नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ आबोहवा और पानी का उपहार दिया है। इन संसाधनों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर के रूप में शिमला ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा वे बचपन से लेकर अब तक शिमला शहर में हो रहे बदलावों को देख रहे हैं। जहां पहले जंगल हुआ करते थे वहां अब इमारतें बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ सुनियोजित निर्माण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर को तारों के जाल से निजात दिलवाने के लिए 145 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत डक्ट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में सब्जी मंडी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक परिसर विकसित किया जा रहा है। लिफ्ट के पास भी एक अंडरपास प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य जारी है और शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए अधिसूचित हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओ ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब चलते हैं आज के खास दिन की ओर, यानी आज के दिन क्या कुछ खास होता है इस बारे में जानते हैं। आज है श्रोताओं 27 मई का दिन और आज राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस मनाया जाता है और ये हर साल मई के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है। और मई का अंतिम बुधवार यानी इस बार आज के दिन 27 मई के दिन ये जो दिन है ये मनाया जा रहा है। श्रोताओं, इस विशेष दिन का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के बीच नियमित शारीरिक गतिविधि, सही पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आज के इस दिन के बारे में आगे कार्यक्रम में और भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती हैं। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अंतराल के बाद आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज के खास दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, आज है 27 मई का दिन और आज के दिन जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और फिटनेस के खास ख्याल के लिए मनाया जाता है। आज का दिन राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को ये बताना कि कैसे नियमित और हल्का व्यायाम जैसे कि योग, पैदल चलना और तैराकी उन्हें जोड़ों के दर्द, मधुमेह और गिरने के जोखिम से बचा सकता है। शारीरिक रूप से फिट रहकर वृद्ध जनों को आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद मिलती है। देश भर के स्थानीय केंद्रों, पार्कों और सहायता प्राप्त आवासों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और समूह गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। श्रोताओं, आज के इस खास दिन के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज के ख़ास दिन के बारे में। जी हां, आज है वरिष्ठ जनों के लिए खास दिन, वरिष्ठ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस। और भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सहायता, यदि आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत, इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा बीमा पॉलिसियां भी उपलब्ध हैं। त्योहारों, आयोजनों और अन्य राष्ट्रीय दिवसों के बारे में श्रोताओ, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक फिटनेस दिवस आज यानी 27 मई को मनाया जा रहा है। और फिटनेस की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक दिन का कोई त्योहार या एक दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है। फिटनेस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हर दिन हमें थोड़ा बहुत समय जो है वो ज़रूर निकालना है और अपनी फिटनेस को ज़रूर जो है वो समय समर्पित करना है। हम फिट रहेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और अपने इस खूबसूरत से जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। श्रोताओं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस दिवस आज मनाया जा रहा है और इसके बारे में हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और भी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में कार्यक्रम में। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आज के खास दिन के बारे में बात कर रहे हैं और सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम में गीत। और कई बार श्रोताओं होता ये है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम कई बार हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं आता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ आज गीतों में हुआ अब तक कि मेरी जो पसंद है उस तरह का शायद श्रोता भी कई बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उद्घोषक आज यहाँ पे है तो हमें इस मूड के और इस तरह के

गीत जो है वो सुनने को मिलेंगे। और आज थोड़ी सी मुझे भी हैरानी हो रही है कि जो गाने में क्लिक कर रही हूँ जब वो चल रहे हैं तो उसका टेस्ट और मूड कुछ अलग ही है। खैर, कभी-कभी होता है श्रोताओं कि हम सोचते कुछ और हैं और ज़िंदगी हमें कुछ और ही रंग दिखाती है। आइए चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज मना रहे हैं हम वरिष्ठ जनों के लिए विशेष दिन, उनकी फिटनेस और उनके स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रति आज का जो ये दिन है ये समर्पित है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो शारीरिक किसी तरह की हम कह सकते हैं क्रियाओं में अगर वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। और अगर आपके घर में भी बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो दिन भर थोड़ा सा समय ना निकाल पाएँ किसी भी वजह से, तो ये उनके लिए भी और आपके लिए भी थोड़ा जो है वो हम कह सकते हैं कि मुश्किल भरा काम हो जाता है। इसलिए अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को प्रेरित करें कि आप थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालें और अपनी फिटनेस की ओर जो है वो ज़रूर ज़रूर ध्यान दें।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आ सकते हैं। सबसे पहला कि सरकार के एजेंसी राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स में डिफरेंट शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप है, उसमें डीलर का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाशी के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच पूरी तकनीक शुक्रवार के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। 1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और समाचारों के बाद श्रोताओं, समय है अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती है। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब बिना रुकावट के आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत समय से कोई कहानी कार्यक्रम में आपके साथ साझा नहीं की, तो आज चलिए सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक बार एक गधा था। जी हाँ श्रोताओं, एक गधा था, उसका एक मालिक था और वो दोनों आपस में बहुत खुश थे। और गधा काम करता पूरी ईमानदारी के साथ और उसका जो मालिक था, ऑनर था, वो उसके काम से बहुत खुश था। फिर कुछ समय के बाद उस मालिक ने उस गधे को खुश करने के लिए एक सोने की काठी ला करके दी। सोने की काठी वो श्रोताओं जो घोड़े की या गधे की पीठ पर रखी जाती है, जिसके ऊपर सामान, ईंट, बजरी, लक्कड़, पत्थर जो भी है वो उसके ऊपर डाल के ढोया जाता है। तो गधा बेचारा भूला था क्योंकि गधा था, सोने की काठी को देख करके बहुत बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे उछला झूमा और चाव चाव में, शौक शौक में उस सोने की काठी को अपनी पीठ पे सजा करके वह बहुत खुश हुआ, बहुत झूमा और जोश जोश में वो दुगनी रफ्तार के साथ, दुगनी गति के साथ अपना काम करने लगा। जितना वो भार ढोता था उससे भी डेढ़ गुना, दो गुना ज़्यादा भार वो उस सोने की काठी के ऊपर लाद करके चलने लगा। और उसका जो मालिक था, उसकी काम करने की इस जो रफ्तार थी, ये जो क्षमता थी बड़ी हुई, उसे देख करके बहुत खुश हुआ और वो उसे प्यार से दुलारता, पुचकारता। और जो गधा था, वो सोने की काठी उसे मिली हुई थी तो वो भी खुश था, डबल जोश और जुनून के साथ वो काम किए जा रहा था। और काम करते करते उसने इतना काम किया, इतना भार ढोया उस सोने की काठी के शौक में कहे या लालच में कहे, कि उसे इतना भी होश नहीं रहा कि वो अपनी क्षमता से भी कहीं अधिक, कहीं ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, बोझा ढो रहा है। और एक दिन अपनी क्षमता से अधिक काम करने की जिद में, चाहत में, उसने बहुत ज़्यादा सामान अपने ऊपर लाद लिया या लदवा लिया और वहीं पे उसके प्राण जो हैं वो निकल गए। और उसके प्राण निकलने के बाद कुछ समय के लिए उसके मालिक ने दुख मनाया और फिर वो अगला गधा ले आया और उसी सोने की काठी को उसने उसे भी दिया और उसी गति से उसका काम जो है वो चलता रहा। अब श्रोताओं, कहानी में समझने वाली बात ये है कि हम में से भी बहुत से लोग, मैं ये नहीं कह रही कि हम गधे हैं, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए वो हमें कोई छोटा सा तोहफा, जैसे सोने की काठी इस कहानी में एग्जाम्पल था, उसी तरह से कोई हमें कुछ देता है और हम बिना सोचे समझे खुश होकर के अपनी क्षमता से दुगना काम करने की कोशिश करते हैं और कई बार उसका नुकसान हमारी जान तक जो है वो ले लेता है। इसलिए किसी को भी खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम ना करें और किसी के छोटे से प्रलोभन या लालच में आकर के अपनी कीमती अनमोल जिंदगी को यूं ही ना गंवाएं। ये थी आज की कहानी श्रोताओं। हर कहानी कहने वाला कहानी अपनी तरह से कहता है और हर श्रोता भी हर कहानी को अपनी ही तरह से, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ के हिसाब से समझता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि हर सुनने वाला मेरे कहने के अंदाज से प्रभावित हो और उसी तरह से उससे प्रेरणा ले, सीख ले, लेकिन कुछ ना कुछ सीख हर कहानी में होती ही है। तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से आज की इस कहानी से भी आप कुछ ना कुछ सीख जो है वो ज़रूर लें। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में श्रोताओं
चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। और गीत जो कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे वो है अजनबी फिल्म से कुमार शानू और सुनिधि चौहान की आवाज़।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में आज हमने बात की वरिष्ठ जनों की, वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस और हेल्थ के बारे में। तो श्रोताओ आपके घर परिवार में भी अगर वरिष्ठ जन हैं तो आज के दिन को सेलिब्रेट करें, वरिष्ठ जनों के साथ समय बिताएँ, उन्हें प्रेरित करें छोटा मोटा व्यायाम योगा एक्सरसाइज करने के लिए, और इस तरह से आप अपने घर के वरिष्ठ जनों के साथ आज का जो ये दिन है इसे अच्छे से मना सकते हैं। और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय हो रहा है फिर से अंतराल का, आइए यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: धर्मशाला की खूबसूरत वादियों के बीच में होने जा रहा है तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन के 90 वर्ष पूरे होने पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। 28 मई से सुबह 11 बजे से 30 मई तक ये उत्सव चलेगा। तिब्बतियन कल्चरल फेस्टिवल इज होलीनेस 14th दलाई लामा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3 दिन का फेस्टिवल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तिब्बतियन फूड स्टॉल, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग। साथ ही चिल्ड्रंस कॉर्नर और हर रात एंड होगी तिब्बतियन सर्कल डांस घोषे से। ये इवेंट सबके लिए ओपन है, आप सभी सब परिवार आ सकते हैं और इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस फेस्टिवल को कराने का एक ही मोटिव है, प्रमोट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप बिटवीन तिब्बतियन एंड लोकल्स, क्योंकि धर्मशाला में जो है वो काफी ज्यादा कल्चरल और कम्युनिटीज साथ रहती हैं। तो आप सभी भी आना ना भूले आपके अपने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 28 से 30 मई तक। धन्यवाद।
5: श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का गीत कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में। गीत को आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। इस गीत के ठीक बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सरकार का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE स्कूल खोले जाएंगे ताकि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन विधायक बनने की परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करवाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% में पहाड़ों से गिरी, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से रहने शुरू कर। अब ये जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने बना दिया।
0: प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। प्रदेश में बीते रोज हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में दावा किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान, उप प्रधान और सरपंच चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लिया है कि यदि गांव और क्षेत्र का वास्तविक विकास करना है तो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जयराम ठाकुर ने भाजपा को जनादेश देने के लिए मतदाताओं का आभार भी जताया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। विनय कुमार ने ये भी कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के चलते जिस तरह से पंचायत चुनाव में

0: कांग्रेस को समर्थन मिला है, उसी तरह अगले साल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से जीत कर सत्ता में लौटेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी 2 चरण होने बाकी हैं और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
1: सर, जो इसमें चुनावों में चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, 2 फेज अभी और इसके होने हैं अगले 2 दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है 4 नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्वगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैकलोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आम जन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संगरोह पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।